नेशन के फन स्टेशन फन एशिया रेडियो पर दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों यू आर लिसनिंग टू द फन एशिया नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉन स्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड ऑल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरावान। मोर वैरायटी है, मोर चॉइसेस है और मोर फन भी है ओनली अंडर वन नेटवर्क विच इज फन एशियाज नेटवर्क। स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं दोस्तों 4 मिनट्स पास्ट 7। हमारा 90s का सेगमेंट अभी हो चुका है खत्म। अभी आपको बहुत ही सोलफुल चाशनी में डूबे हुए और दिल को सुकून देने वाले गाने सुनवाने वाली हूँ फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर ऑफ आर शो। और उसके बाद बहुत ही पार्टी सॉन्ग्स चलेंगे ताकि आपको वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स सुनने को मिले एक ही शो में। वैरायटी एज दिस इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, वैसे ही मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं मेरे शो में आपके लिए बहुत कुछ अच्छी वैरायटी लेकर आओ। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आपको लेकर चलती हूं बहुत ही सुकून भरे गानों की तरफ।

बहुत ही खूबसूरत गाना दोस्तों सुने थे आप टेकन फ्रॉम द मूवी मैरी कॉम अरिजीत सिंह की आवाज में। आपसे पहले ही कहा था दोस्तों दिल को सुकून देने वाले बिल्कुल चाशनी में डूबे हुए बहुत ही मेलेडियस गाने अभी इस सेगमेंट में आपको सुनवाऊंगी। अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे बट उससे पहले बता दूं दैट हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विथ यू 5 मिनट्स 10 मिनट्स एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम सो बिकॉज एट पैशन हेल्थ केयर यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट योर फैमिली फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ योर कम्युनिटी पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर दिस इज नॉट ऑल एंड पैशन हेल्थ इज ग्रोइंग दे आर नाउ हायरिंग एक्सपीरियंस्ड प्राइमरी केयर डॉक्टर्स एंडोक्रिनोलॉजिस्ट पेडियाट्रिशियंस and a psychiatrist for full-time and a part-time opportunity. So if you are passionate about patient care, send your resume to passionhealthphysicians@gmail.com. Again, the email address is passionhealthphysicians@gmail.com or you can text them. The number to text is 217-454-46. For more information, visit passionhealthphysicians.com or you can call or text 214-666-6259. Passion Health Primary Care. Your health is our passion.

बहुत ही खूबसूरत दोस्तों, अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में लाल सिंह चड्ढा से सुन रहे थे आप ये बहुत ही सुकून भरा गाना। वेल, अभी बारी आ चुकी है आप सभी के साथ एक गिव अवे शेयर करने की। जी हाँ दोस्तों, हियर इज योर चांस टू विन अ दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज रेस्टोरेंट विच इज लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। दिस गिव अवे इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली। हाँ दोस्तों, गौर से सुन लीजिएगा कि दिस गिव अवे इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली। तो अगर आप मेरे सवाल का सही जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं एक दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी। तो आप ये कब खा सकते हैं, जब आप वहां पर जाकर फ्लेवर लाउंज में जाकर डाइन इन करेंगे तभी आपको ईदर ऑफ द डिश यू नो फ्री मिलेंगी। तो फॉर ऑल द लिसनर्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे ऑन एनी अदर शो एट फनीशिया इन द लास्ट वन मंथ। जी हाँ, ये भी एक कंडीशन है कि आप ये गिव अवे लास्ट वन मंथ में जीते नहीं है तो ही आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट वन मंथ में ये गिव अवे जीता है तो प्लीज प्लीज प्लीज आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल टू नॉट कॉल मी अगेन, because it will be very difficult for me to give you that giveaway even though you know the answer. Please have others also get the chance. So agar ye bahut hi achhi condition hai ki agar aapne last one month mein ye giveaway jeeta hai to please do not call, let others also get the chance to win this giveaway. So ये जो है कि यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ हियर, सो दैट्स द कंडीशन दैट वी हैव फॉर दिस गिव अवे। तो मेरा सवाल आपसे ये है दोस्तों, ये जो अगला गाना मैं यहाँ पर अभी प्ले करने वाली हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि ये गाना कौन से मूवी का है। अगला गाना जो यहाँ पर प्ले होने वाला है, आपको मुझे ये बताना है कि ये गाना कौन से मूवी का है। तो अगर सही जवाब आपने मुझे दिया तो आप जीत सकते हैं दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी फ्रॉम दी रेस्टोरेंट विच इज़ फ्लेवर लाउंज। और फिर से एक बार बता देती हूँ दोस्तों, दैट दिस गिव अवे इज फॉर डाइन इन ओनली। और ये गिव अवे आपने पिछले एक मंथ में जीता नहीं है, ऐसी कंडीशन है। हमारा जो नंबर है 9722355555, ये अपने स्पीड डायल पे रख दीजिए। तो सवाल ये है दोस्तों, ये जो अगला गाना मैं यहाँ पर अभी प्ले करने वाली हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि ये गाना कौन से मूवी का है। सही जवाब देने वाले को फ्लेवर लाउंज की तरफ से दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी। 9722355555 मूवी नेम आपको मुझे बताना है इस गाने का।

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

मोर म्यूजिक मोर मैजिक और मोर मस्ती के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। स्टूडियो की कड़ी में हो चुके हैं 33 मिनट्स पास 7। बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है दोस्तों आपका और मेरा। गिव अवे के विनर हो चुके हैं राहुल शर्मा जी। जी हाँ, मैंने जो गाना प्ले किया था यहाँ पे फिर

ये गाना था टेकन फ्रॉम द मूवी कला, और राहुल ने मुझे दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हो चुके हैं वो फ्लेवर लाउंज का गिव अवे, जीत चुके हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, आपको वादा किया था कि बहुत ही पार्टी सॉन्ग्स अप बिट गाने आप सभी को सुनवाऊंगी इन द लास्ट आवर ऑफ माय शो में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेकर चलती हूँ आपको धमाकेदार गानों की तरफ।

लड़की ब्यूटीफुल कर गई चूल। जी हाँ, लड़की अगर ब्यूटीफुल होगी तो चूल तो करके ही जाएगी। वेल, इसका कुछ मतलब नहीं है, मुझे पता नहीं ये लोग ऐसे लिरिक्स क्यों लिखते हैं, बट एनीवेज आपको बता देती हूँ, डालस के लोगो एंड बॉलीवुड फैंस, योर प्लेलिस्ट इज अबाउट टू कम अलाइव। इसका मतलब क्या है भाई? तो इसका मतलब ये है कि विशाल एंड शेखर, द ड्यूओ बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड बिगेस्ट सुपर हिट्स, आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर टू डालस ऑन संडे July 12th एट द कर्टिस कलवेल सेंटर गार्लैंड में। जी हाँ, इनका लाइव शो रहने वाला है। टिकट्स आर ऑन सेल नाउ एट kashpatelproductions.com। जी हाँ, kashpatelproductions.com पे जाकर आप अपने टिकट्स ले लीजिए। July 12th को कर्टिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड होने वाला है शो विशाल एंड शेखर का लाइव। तो चलिए भाई, विशाल और शेखर की बात निकली है तो ये वाला गाना उनके म्यूजिक डायरेक्शन में बना हुआ सुन ही लेते हैं। ड्रामा क्वीन फॉर यू ऑल।

0: This song is dedicated to Safi.
1: तू गाती है?
2: मेरी फैमिली में चाहे किसी का भी बर्थडे हो, मुझे तो गाना गाना ही पड़ता है. बहुत सारे गाने आते हैं मुझे.
1: मैं कनाडा भाग गया, सिंगर बन.
3: रात बराती कंधा कोठे टप टप के जाना, तू सोखा समझे लगिया तोड़ निभाना.
1: तेरी बार

0: Nice. Sweet. Sister type. थोड़ा गरम गा सकती है?
1: देख, मैं बताऊँ।

ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 7:55. यही कहूंगी, वक्त हो गया है मेरे जाने का. बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का. दोस्तों, आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है. यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है. विद दैट, लिव फुल्ली, लव पैशनेटली एंड लाफ लाउडली. लेती हूँ आप सबसे विदा इसी थॉट के साथ और कहती हूँ नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम शो सेम चैनल ऑन 104.9 FM पर मिलने का वादा. मेरे बाद आने वाले हैं प्रेम, तो आप उनको भी सुनिए, उनका भी हौसला बढ़ाइए. टिल देन, गुड नाइट डॉलर्स, बाय बाय, हैव अ ग्रेट नाइट अहेड एंड हैव अ ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ द वीक अहेड. बाय बाय एंड गुड नाइट.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Chicken banana.
6: Chicken banana?
7: Bro, banana nahi, banana. Matlab, make the chicken right.
8: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
9: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mix veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
4: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai. New on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao. Flavor hum sambhal lenge.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

Wish you a very happy, happy Sunday, Devio Sajano, Bhaiyo Beno of Dallas. I hope you're having a beautiful Sunday evening with your friends, family and loved ones. Subah to hamari ekdam thadakedar se ekdam uthe hum sab ke sab. So much of thunderstorms and rain. Of course, obviously, everybody needs rain, right? We need rain. We need water. But yaar, jis tarah se Sunday ka shuruaat hua, I was like, oh my God. But hopefully, everybody has got some time to go out in the evening. It's beautiful out there. Not so crazy hot. It's just perfect right now for a June weather. And usko aur zabardast karne ke liye hum zabardast gaane bajane wale. So let us know your jam. 972-235-5555 to all who have just tuned in to Funasia. This is the Sunday Pop Station with RJ Prem. आपका और मेरा साथ रहेगा 8 से लेके 10 बजे तक. अभी तक हमें अपूर्वा एंटरटेन कर रही थी उनके प्लेलिस्ट से, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल डू द सेम विथ माय प्लेलिस्ट. बट यस, 8 से लेके 9 बजे तक हम बजाते सारे पॉप सॉन्ग्स, यस, फ्रॉम द एल्बम्स एंड नॉट फ्रॉम द मूवी. सो लेट अस नो योर जैम एंड वी विल प्ले हियर राइट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ फनेशिया. नेक्स्ट गाना आदित्य रिखारी का साहिबा.

लेजेंडरी आइकॉनिक शंकर महादेवन का ये गाना था, जब ब्रेथलेस आया था चैनल वी एमटीवी पे, इतना बजता था। ओ माय गॉड, ऑल द मिलेनियल्स आउट देयर विल अग्री टू मी दैट दिस सॉन्ग वाज अ सेंसेशन। दिस वाज वायरल बिफोर द इंटरनेट। एंड ऑफ कोर्स द लेजेंडरी शंकर महादेवन डिड से इन वन ऑफ द इंटरव्यूज, हे भैया ये मैंने एक साथ नहीं गाया है, बट यस ये गाने का नाम ब्रेथलेस है। सो वी ऑल थॉट दैट दिस सॉन्ग वॉज संग इन वन स्ट्रोक, बट ही क्लैरिफाइड ईयर्स लेटर। ऑल राइट, अभी मेरी आशा जी से बात हुई, उन्होंने बोला यार बॉम्बे वाइकिंग्स करके एक बैंड है, उसका एक गाना बजाओ। मैंने बोला यार ऐसा आइकॉनिक बैंड बना ही नहीं है, एंड हमारे सेगमेंट में उनका एक गाना हमेशा बचता है। सो आशा जी की तरह आपके पास भी कोई गाने हो तो लेट अस नो योर जैम। 972-235-5555। मेक श्योर इट्स फ्रॉम द एल्बम्स एंड नॉट फ्रॉम द मूवीज। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, प्रेम जोशी पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब।

हेडिंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, बट कहीं जाएगा नहीं क्योंकि आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक 10 बजे तक, और 9 बजे तक तो हम पॉप सॉन्ग्स की जो बारिश है वो कंटिन्यू रखेंगे. थैंक यू एवरीबॉडी.

such an iconic song from an iconic person. Ladies and gentlemen, welcome to the Sunday Pop Station with Prem. गाने वैसे बैक टू बैक आ चुके हैं मेरे पास दो तीन रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुकी है बट दैट शुडंट स्टॉप यू फ्रॉम कॉलिंग अस एंड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन 972-235-5555 आई बी एबल टू एटलीस्ट यू नो एड इन लाइक फोर सॉन्ग्स बिफोर वी कॉल इट अ नाइट फॉर दिस सेगमेंट उसके बाद हम ब्लॉकबस्टर गाने बजाएंगे नेक्स्ट गाना इज अनिकेत ने हमें रेकमेंड किया है तेरी मेरी गल बन गई फ्रॉम द सहोटास हियर वी गो

ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बैक टू बैक रिक्वेस्ट आ गई है तो पूरा का पूरा गाना नहीं बजा पाऊंगा. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. नेक्स्ट गाना हमें आनंद ने रेकमेंड किया, इंस्टेंट कर्मा का दिल क्या करे जब किसी से. यार शान को गाने देता हूँ यार, मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूँ. दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम. आई होप यू आर एंजॉइंग दिस दिस सेगमेंट. अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट. क्योंकि हम ऑफ एयर भी बहुत सारा काम करते हैं, हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करते हैं, फ्रॉम इमिग्रेशन टू रियल्टर टू हेल्थ, डेंटिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, हम सभी से बात करते हैं. सो लेट अस नो एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, प्रेम जोशी पॉडकास्ट. हियर वी गो.

अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग बाय अलीशा चिनॉय, मेड इन इंडिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, दो तीन रिक्वेस्ट आ चुके हैं ये सेगमेंट के, बट ऑफ कोर्स हम और रिक्वेस्ट लेंगे, बट इट विल बी आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक. सो कीप हिम कमिंग. 9722355555. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना दीपिका ने हमें रेकमेंड किया है, निगोड़ी कैसा जवानी है. निगोड़ी कैसी जवानी है. आई होप आई एम नॉट बुचरिंग दिस सॉन्ग. इट्स बीन अ वाइल सिंस आई हैव हर्ड दिस. इला अरुण का ये आइकॉनिक गाना ऑन द एयरवेव्स ऑफ फनेशिया.

यार लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे सही में लगता है अगर हमारी आवाज मुंबई तक पहुंच रही है और कुमार सानू बाय सम वे इज लिसनिंग टू दिस शो, यू नो संडे पॉप स्टेशन विद प्रेम, इफ कुमार सानू इज लिसनिंग सम हाउ राइट इन दिस इंसेप्शन वर्ल्ड, प्लीज कम बैक विद दीज पॉप सॉन्ग्स, प्लीज डू इट यार. ऑफकोर्स ही हैज हैड हिज आइकॉनिक रन इन हिंदी मूवीज एंड अदर लैंग्वेजेस एज वेल, बट पॉप सेगमेंट अलग ही था, वो एरा ही अलग था. एंड आई होप दैट ही कम्स बैक अगेन विद समथिंग स्पेशल एंड समथिंग सिमिलर. 972-235-5555, दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद आर जे प्रेम. फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट. हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें कॉन्वर्सेशंस करते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ, सो डोंट मिस आउट ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. ओमकार ने रेकमेंड किया है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ हिंदी पॉप सेगमेंट, यस तन्हा दिल बाय शान, बिकॉज इट्स नॉट अ सॉन्ग, इट्स एन इमोशन.

0: पुराने दिन याद आ गए देवी और सजनों, एकदम से यार लोगों के एकदम नॉस्टैल्जिक मेमोरीज में पहुंचा दिया है यार। मुझे इतने अच्छे अच्छे कॉल्स आए, प्रेम यार कॉलेज के दिन याद आ गए, प्रेम यार वो स्कूल के दिन याद आ गए, एंड दैट इज आवर मोटिव यार। संडे एकदम हमारा एकदम स्ट्रेस्ड वाला रहता है, एकदम प्रेशर वाला रहता है, और हम इस सेगमेंट से आपको एकदम स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं। सो मेक अस let us know if there's any other song that comes to your mind. 972-235-5555. I'll see you on the other side.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.

यार हमारे डैलस वासियों को बोलना पड़ेगा यार, क्या टैलेंट है लोगों में यार। ऑल आर टेक प्रोफेशनल्स, हाईली सक्सेसफुल, सिक्स फिगर सैलरीज, फैमिली पीपल, सब कुछ कर रहे हैं यार। और मैंने एक छोटा सा रिक्वेस्ट क्या कर दिया कि यार मुझे पॉप सॉन्ग्स रेकमेंड कीजिए, लोगों ने दिल पे ले लिया यार। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्टूडियो लाइन, हर जगह से रिक्वेस्ट आ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। और अगर दिव्य सज्जनों से आप हमें, हमारे वो साइलेंट लिसनर्स है आप, उसको भी थैंक यू बोल रहे हैं यार, क्योंकि आप हमारे गाने सुन रहे हैं। सो दैट्स ऑल्सो अ लॉट फॉर अस। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर। एंड ऑफकोर्स यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, दैट इज प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI podcast. I do want to mention about Passion Health Primary Care because they are the sponsors of this segment. How much time does your doctor spend with you? 5 minutes, 10 minutes? At Passion Health Primary Care, every appointment is scheduled for 30 minutes because truly understands their health takes time. Because at Passion Health, you're not just a patient, you're family. For you, for your family, for the health of the community, Passion Health Primary Care. That is not all, and Passion Health is growing. They are now hiring experienced primary care doctors, endocrinologists, pediatricians, and psychiatrists for full-time and part-time opportunities. If you're passionate about patient care, submit your resume at passionhealthphysicians@gmail.com or text 217-454-46 for more information. Visit passionhealthphysicians.com or text or call 214-666-6259. नेक्स्ट गाना बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, क्योंकि हमारे जो यंग लिसनर्स है, जेन अल्फा भी हमें मेरे सेगमेंट पे कॉल करके मुझे रिक्वेस्ट करते हैं। तो सानवी, आई होप यू लिसनिंग टू मी, बिकॉज सानवी ने 15 मिनट पहले रिक्वेस्ट किया था, बट ऑफकोर्स मेरे तीन चार बैक टू बैक रिक्वेस्ट आ गए थे। तो सानवी इज जस्ट 5 years old एंड सानवी हैज रिकमेंडेड अ सॉन्ग, तेरा चेहरा, फ्रॉम जगजीत सिंह। कैन यू इमेजिन? आई एम श्योर उनके किसी मॉम या डैड ने बोला होगा ये गाना, बट इफ सानवी यू लाइक दिस सॉन्ग, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर म्यूजिक टेस्ट यार।

such an iconic song, ladies and gentlemen. बहुत मजा आ रहा है यार आज सब सबके सारे जो रिक्वेस्ट लिए है हमने. कैन यू इमेजिन 95% जो गाने हमने बजाए इस दो घंटे में सारे के सारे हमारे डैलस वासियों ने रेकमेंड किए. ऑल ऑफ द सॉन्ग्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सॉन्ग्स आर रेकमेंडेड बाय आर अमेजिंग अमेजिंग लिसनर्स. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. इफ यू लाइक दिस सेगमेंट, इफ यू लाइक द शो, इफ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग ऑफ एयर एज वेल एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. इट्स कॉल्ड प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI पॉडकास्ट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब. I do want to mention about the segment's sponsor, who is Omar Khwaja. If you're in an unfortunate incident which involves a car or truck accident or slip or fall incident, attorney Omar Khwaja will fight your case and help you get the compensation that you deserve. Dealing with insurance companies can be stressful. You need an attorney that will make sure you're compensated and you don't pay until you win. For a free consultation, call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. Next gana, an iconic song from not so iconic movie Jao Na करके गाना है. मुझे बड़ा पसंद है यार क्योंकि इसमें हमारा शहर बॉम्बे बहुत अच्छे से दिखाया है. एंड इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग फ्रॉम द मूवी व्हाट्स योर राशि. हियर वी गो.

हाय हेलो नमस्ते, मैं हूँ काव्या। अभी हम आपके आरजे है फ्रॉम 10 to 12। अभी प्रेम सर चले हैं घर, अभी हम यहाँ ठहरे हैं आपके लिए। चलो बजाइए हम आपके लिए एक बढ़िया सा सॉफ्ट सॉन्ग।

0: चलो, आप आपके लवर्स को याद करते हुए तेरे होने लगा हूँ। अब हम बजाने वाले हैं दूसरे अच्छा सा सॉफ्ट सॉन्ग। हियर वी गो।
1: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली
2: बची है पूरे 8 आने।

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में.

पियू बोले। चलिए अब हम सुनते हैं विद्या बालन की और एक मीठी सी गाना। ये रहा हमारा प्यारा सा गाना।

ये था पीके मूवी से। अभी हम बजाने वाले हैं सजनी रे।

Ye tha Sajni Re from Lapata Ladies, one of my favorite song. आजकल मेरे को ना इश्क के गाने सुनने के बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे तो दुनिया तो इश्क से भरा हुआ है। कम ऑन, चलो अब हम पहना नेक्स्ट गाना सुनने वाले हैं, और एक इश्क का गाना।

तो ये था जोगी गाना फ्रॉम शादी में जरूर आना। ये एकदम बढ़िया सा मूवी है, अगर जिस किसी ने भी नहीं देखा है जरूर देखिएगा। दिस इज़ अ लव स्टोरी बेस्ड विथ करियर एंड मोटिवेशन। बहुत अच्छा लगता है ये मूवी देखने में। अब हम बजाने वाले हैं नेक्स्ट सॉन्ग जो है मेरी मम्मा का फेवरेट। आप सबके मम्मी के गाने भी ये होंगे। अब ये यार मेरे तरफ से सुनिएगा।

ओए होए होए होए, शाहिद कपूर के सॉफ्ट एरा के गाने, वाह क्या मज़ा आता है उनकी मूवीज़ और उनके गाने तो लाजवाब, सुनने को बहुत मन करता है। अब हम नेक्स्ट गाने में आते हैं।

चलते दिए, ये है गाना फ्रॉम प्रेम रतन धन पायो, हमारे सलमान खान और सोनम कपूर के गाना। ये बहुत ही अच्छा मेलोडी गाना है, मेरे को ये इतना अच्छा पसंद है कि कभी भी मेरे को मन करे, हाय एकदम सॉफ्ट गाना सुनने का मन कर रहा है तो ये जलते दिए। अगर किसी को गाना गाना आता भी नहीं है, प्लीज़ डू ट्राई दिस म्यूज़िक। आप लिरिक्स एक बार गा के तो देखिए आप कितना मज़ा आता है, जैसे कि आप ही अच्छे सिंगर हो यहाँ पर। चलिए अब हम आएंगे रश्मिका मंदाना के गाना। हाय शी इज़ माई फेवरेट। रश्मिका मतलब अरे भाई ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे रिलेटिव हो या नहीं तो मेरी दीदी हो। चलो सो आई वॉज लाइक अब तक मैंने रश्मिका का गाना क्यों नहीं डाला, सो हियर वी गो फॉर रशी सॉन्ग।

ये मूवी था तितली, तितली गाना फ्रॉम चेन्नई एक्सप्रेस ऑफ शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण। चेन्नई एक्सप्रेस इतनी खूबसूरत मूवी है, अरे ऐसा कोई है ही नहीं जो इसने ये मूवी देखा ही नहीं हो। चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट गाना, और वो है दुनिया।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

चाहो मी आना फ्रॉम आशिक टू। अभी और एक ठंडा वाला गाना, एकदम सुरीली सॉफ्ट गाना बजाएंगे और उसके बाद एक अच्छी सी रॉक रॉक म्यूजिक चलती रहेगी टू सपोर्ट ऑल दी लॉन्ग ड्राइवर्स जो अभी रात के समय चला रहे, उनको जागे रखने के लिए। अब हम अच्छा सा गाना डालने वाले हैं आप 12 बजे के बाद। प्लीज़ टू रीच सेफ टू योर प्लेस एंड या गुड नाइट।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: मुझे नहीं पता हमारे बीच कब क्या गलत हो गया, सब खत्म क्यों और कैसे हो गया।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

104.9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop infotainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: क्लास शुरू करें?
1: Desi swag, Bollywood tag, Fun Asia.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: FM turns up the heat in Dallas.
1: That's how we do it.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

104.9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: अब क्या?
1: क्लॉस्ट्रोफोबिया. व्हाइट हाउस की कैंटीन में स्टोर पहुंच गया, प्लीज चेक.
2: अच्छा, कौन सा, वो हाइड्रोजन बम वाला?
3: सर, कोर्ट में बात कीजिए.
2: अश्वत सिक्योर लाइन है, प्लीज डोंट इरिटेट मी, नहीं तो अभी वो ट्रिगर दबा दूंगा. हाँ, फाइनल चेक्स एवरीवन. शाफ्ट सील करने का वक्त आ गया है. कम ऑन, गेट रेडी.

फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात 104।

beautiful.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route. Rerouting.
1: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
2: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
1: क्यों?
2: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
1: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
3: वन मिस्टेक डजंट हैव टू डिफाइन योर फ्यूचर अ DWI और DUI चार्ज कैन ब्रिंग सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग लाइसेंस सस्पेंशन फाइंस एंड इवन जेल टाइम बट यू डोंट हैव टू फेस इट अलोन एट माथुर लॉ ऑफिसर्स पीसी वी प्रोवाइड एक्सपीरियंस्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन इन क्रिमिनल डिफेंस मैटर्स इंक्लूडिंग DWI केसेस
4: वी ऑल्सो असिस्ट विद रिलेटेड लीगल इश्यूज इंक्लूडिंग इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस दैट मे अराइज फ्रॉम क्रिमिनल चार्जेस एवरी केस इज डिफरेंट द राइट लीगल स्ट्रेटजी डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक फैक्ट्स and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
10: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
11: चिकन बनाना
12: ब्रो बनाना नहीं बनाना मतलब मेक द चिकन राइट
13: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
14: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
15: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
15: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
14: सच में सब संभालेंगे
15: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 Vanessa Events, your celebration partner.

0: खूबसूरत यादें थी, पर अब बस वो लम्हा याद आता है जब वो जा रही थी।
1: मैं भगवान से प्रे करूंगा कि सिमरन तुझे किस करे। You know, I just love when those लड़कियां

0: country's first long-distance calling card, Keith. Un logon ke liye jo zyada baatein karna pasand karte.
1: Excuse me, sir. India mein aapko calling cards ka idea kaise aaya?
2: Duniya choti hoti ja rahi hai aur India bada hota ja raha hai. Aaj hum duniya bhar se baatein karte hain. Idea ye hai ki...
3: That, ladies and gentlemen, was a track from a movie that we don't hear this song that much, but it was from Jab We Met, and I do hope that you enjoyed it very much. We do have Hail to Nail that I would like to talk about here. DFW homeowners and business owners, is your roof ready for the next storm season? You can trust the experts at Hail to Nail Contracting for professional roof replacement and repairs. From shingles and TPO to metal roofing, they can handle both commercial as well as residential projects with lots of quality and care. And that's not all. They also offer general remodeling, painting, repairs and concrete work to keep your property looking its best. For a free inspection and for assistance of claims with your insurance company, you can call them. The number to call is 682-561-9795. And you can also check out their 5-star Google reviews. For dependable service, it's Nisar Ahmed, who you can reach at 682-561-9795. Roof replacement as well as other general repairs, all possible, including remodeling, painting, repairs and other concrete work, all available at Hail to Nail Contracting. Hail to, the number two, the digit two, Hail to Nail Contracting, and I'll repeat that number one more time, 682-561-9795. Let's round off this first hour of our program. I do have another very busy hour coming up for you. Stay with me right here on the airwaves of the Fun Asia Network, and I'll take your calls now. Lines are open, 972-235-5555.
4: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
5: In association with Passion Health Primary Care.
6: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
7: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
8: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
9: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
10: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
11: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
12: Kaun sa?
11: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है
12: अरे सारे तो सेम है
11: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये ये ये देखो ये वाला
12: ओ हाँ ये तो अलग है
13: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
14: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में रॉयल सोना मसूरी राइस हो नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं एक ही ट्रिप एक ही स्टोर और सारा सामान डन तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ HEB हियर एवरीथिंग्स बेटर
15: सफर खूबसूरत है मंजिल से भी अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
16: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-2458 और विजिट lawsontravel.com.
17: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी.
18: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
19: अब करेगा, बिकॉज़ इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
20: वेट, इतना सब और प्राइस?
19: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा मैं हीरोइन
21: हूं. जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन.
22: अरे कहना क्या चाहते हो?
23: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी. अब टेंशन का टाइम गया. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर. फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू. कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट.
24: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
25: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
19: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
26: मामू देखो क्या हो गया.
27: ओ क्या हो गया?
26: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
27: ओए जर्मन का कमाल है.
26: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
27: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन. मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा यार.
28: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
29: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.
3: If you are just joining us, welcome to the show on this lovely Monday morning. We are getting this week started for you. We will be in the 90s all week. It's going to be a rather hot week and our heat index many times will be going above 100. So get ready for a very hot week. And here on your request is Zehna Seeb.

0: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
1: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
0: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
1: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
2: इंट्रोड्यूसिंग Lumity लर्निंग सेंटर, Frisco, Prosper और McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math और English plans, certified teachers, continuous feedback, on demand support और हर बच्चे के लिए competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
3: Documents या parcel भेजनी है?
4: हाँ।
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ।
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ।
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
5: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
6: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
7: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
6: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
7: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
6: ये क्या होता है?
7: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
8: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
14: बिग अचीवमेंट्स डिजर्व अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशंस. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
15: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: The number here for all your calls is 972-235-5555. And we can talk about whatever it is that you wish. It is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: बैठ जाऊं पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था
3: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपेटिटर कोर्ट मैच भी कॉल 469-298-3870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
8: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
9: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
12: ओए होए भाई एक और नई गाड़ी सच बता लॉटरी लगी है क्या
13: लॉटरी नहीं यार अच्छी क्रेडिट थी जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी
12: के टू ड्राइव मतलब
13: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है
12: वाह मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ
13: 100%
14: नई हो या पुरानी लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 केटो ड्राइव डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर
15: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
16: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
16: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
15: सच में सब संभालेंगे
16: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 Vanessa Events, your celebration partner.
0: Let's get started with this hour of the program. Welcome to the show. If you're just joining us, this week is getting started for you. It's Monday, the 8th of June, and it's going to be a rather hot week. We are going to be in the 90s all week with our heat index sometimes going to 100. So get ready for this week. We will have the world news coming up for you a little later, but right now some stories from the annals of history that happened on today's date, the 8th of June.

एंड इट इज ए रेनी वीकेंड दैट यू ऑल हैड, बिकॉज मैं तो यहाँ थी नहीं, तो मुझे रेन मिला. वैसे एक्चुअली जहाँ पे मैं थी वहाँ पर भी मुझे थोड़ा बहुत रेन मिला, बट येस इट वॉज अ रेनी वीकेंड फॉर ऑल ऑफ यू हियर. हीट और ह्यूमिडिटी अब वापस जो आने वाली है उसके बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में, क्योंकि शो तो बस शुरू हुआ है. दिस इज़ गपशप गली विथ मी टू. 12:30 बजे तक हूँ मैं आपके साथ. प्लेंटी टू टॉक, प्लेंटी टू शेयर, plenty to play for you in terms of music as well.

कमाल था इन दोनों का कोलैबोरेशन. एक्चुअली आई मस्ट टेल यू ऑल दैट. आपने भी अगर तेरी बातों में उलझा जिया फिल्म देखी है तो यू नो दैट द रिलेशनशिप वॉज स्ट्रेंज येट वेरी इंडियरिंग इन द फिल्म. और ये गाना जो कि जिसकी लॉन्जिविटी रहने वाली है सचिन जिगर का ना, ये एक खास उनकी बात होती है कि उनके म्यूज़िक में ना एक वो चार्म है कि वो रहेगा सदियों तक. लोग सुनने वाले हैं उस गाने को जो मैंने अभी अभी प्ले किया. डोंट यू थिंक सो? वैसे शाहिद कपूर और कृति सैनन फिर एक बार आने वाले हैं और ऑन अ मोर ह्यूमन लेवल दैट दे आर गोइंग टू बी इंटरैक्टिंग इन कॉकटेल 2. लेडीज एंड जेंटलमैन 19th जून को रिलीज होने वाली है. इफ़ यू रिमेंबर कृति सैनन वॉज अ रोबोट इन तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, तो येस दिस वन विल बी अ मोर ह्यूमन रिलेशनशिप बिटवीन द टू एक्टर्स दैट यू गोइंग टू सी. और साथ ही साथ यू नो एक्टिंग को रिएक्टिंग acting is more like reacting to your co-actor, right? तो इस बारी वो reaction दे पाएंगी शाहिद कपूर के सारे emotions का reaction सही तरीके से दे पाएंगी. Yes, that's a plus for all of us in Cocktail 2. Looking forward to watch this one, which also stars.

0: आपको अगर कुछ ऐसा स्पेशल चाहिए अपनी लाइफ को के स्पेशल मोमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, यू शुड बाय समथिंग फॉर योरसेल्फ टू कीप अ मेमोरी ऑफ दैट. और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड से बेहतर समथिंग टू कीप एज ए मेमोरी फॉर अ स्पेशल ओकेजन तो क्या ही हो सकता है. तो ज़रूर याद रखें मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. It is on Preston Road in Frisco, your destination for stunning diamond jewelry that's elegant, timeless and crafted to shine. Zarur yaad rakhein ki download karna hai aapko Malabar Gold and Diamonds ka mobile app for the latest collection updates and more details. Details mere show ka ye hai ki thodi der mein hamare saath Hussain Panjwani from Dream Home Mortgage judenge. Uske baad hamara ek FIFA segment aata hai aur uske baad hamare liye पंडित ईश्वर लेकर आते हैं जोडियक साइन का पूरे हफ्ते का बताने के लिए कि कैसा जाने वाला है बेस्ड ऑन जोडियक साइन.
1: फ्रिस्को इज ग्रोइंग फास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ आवर सिटी नीड्स एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप. फॉर मोर देन 40 इयर्स रॉड विलहावर हैज हेल्प्ड बिल्ड फ्रिस्को, क्रिएटिंग जॉब्स, सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टिंग इन द कम्युनिटी ही कॉल्स होम. रॉड बिलीव्स इन सेफर नेबरहुड्स, स्मार्टर डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोटेक्टिंग द फैमिली वैल्यूज दैट मेक्स फ्रिस्को स्पेशल. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
4: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर. उमर ख्वाजा.
5: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
6: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
7: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
8: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
9: I've been researching retirement planning.
10: Oh, really? Where?
9: Google, YouTube, a guy on TikTok.
10: Or you could just talk to WealthTactic.
9: What's the difference?
10: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
11: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
12: सच में? सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

Well, after a stretch of wet weather in North Texas, temperatures will climb in the week ahead. बस वेदर अपडेट लेकर आने वाली हूँ राइट नाउ. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. आप लोगों के साथ 12:30 बजे तक हूँ और इस सेगमेंट में हमारे साथ हुसैन पंजवानी फ्रॉम ड्रीम होम मॉर्गेज विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली. कल डालस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास 3.55 इंचेस ऑफ रेनफॉल दैट हैज बीन रिकॉर्डेड विच ब्रोक द डेली रेनफॉल रिकॉर्ड. और आज हमारे लिए पूरा ड्राई आउट जो है उसमें हम कुछ आइसोलेटेड स्टॉर्म्स भी देख सकते हैं. देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट स्पेशली फॉर दोज ईस्ट ऑफ द I-35 कॉरिडोर एंड साउथ ऑफ I-20. एंड द डे स्टार्टेड अ बिट क्लाउडी लेकिन सनी स्काईज एक्सपेक्टेड हैं इन द आफ्टरनून आवर्स. ब्रीजी विंड्स विल कम आउट ऑफ द साउथ विद गस्ट्स अप टू 25 माइल्स पर आवर. सो नॉट अ गुड डे टू हैव अ गुड हेयर डे. टेम्परेचर्स जो है हमारे लोअर 90s में क्लाइंब अप करने वाले हैं और ये पूरा हफ्ता धीरे धीरे ना एक आध डिग्री बस बढ़ता ही चला जाएगा. ए हाई प्रेशर सिस्टम विल बिल्ड दिस week allowing for conditions to heat up and the sun to shine bright on our heads. और हमारे जो आज का हाई है कुछ 91 के आसपास हमारे रहने वाला है. जैसे कि मैंने कहा कल 92, परसों 94 और थर्सडे को 95 एंड उसके फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद क्लोजर टू द डे करेंगे. अभी तो फिलहाल जो मुझे दिख रहा है इट इज़ गोइंग टू बी इन द रेंज ऑफ 96 to 98 दैट आई एम लुकिंग एट. सो येस वील कीप यू पोस्टेड ऑन दैट लेडीज एंड जेंटलमैन. डू नॉट वरी एट ऑल. और चलिए आगे की बात आगे करेंगे आपके साथ क्योंकि अभी तो भाई बहुत लंबा रास्ता है आपके साथ टिल 12:30 दैट आई एम गोइंग टू बी विथ यू. It's 25 minutes past 10 right now.

This beautiful song, ladies and gentlemen, from Chand Mera Dil, Ananya Pandey aur Lakshit. Ananya Pandey ko bahut sara trolling mila hai for this movie, I should say. Lekin wo hai ek dance ke liye, jiske baare mein mere khayal se maine baat ki thi, and people who are interested in it do know that ki क्यों और किस वजह से उनकी ट्रोलिंग हुई थी. अभी ट्रोलिंग हो रही है पेडी के डायरेक्टर, पेडी जिसमें कि रामचरण है, और जानवी कपूर को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं उस फिल्म में. एंड इट इज़ टू डू विथ ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ यू नो जानवी कपूर्स कैरेक्टर, एंड दैट इज़ वॉट पीपल आर एब्सोल्यूटली कॉलिंग आउट ऑन. और इसी के चलते मेरे ख्याल से फिल्म मेकर ने कुछ अपॉलॉजी वगैरह भी मांगी है. आई वॉज जस्ट रीडिंग अप अबाउट इट वेरी क्विकली. सो यस, जानवी कपूर के लिए कुछ स्टैंड लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं. एंड इट्स द तेलुगु फिल्म दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. And the film has, as I said, has faced severe criticism for the hyper-sexualization and lack of agency for, you know, Janhvi Kapoor's character. तो इस बारे में हमारी बातें तो मतलब हम करते रहेंगे, फिल्मों की बातें हमारी होती रहेंगी. लेकिन also what I want you all to remember कि अगर कोई भी अगर टॉपिक आपके मन में आपको इंटरेस्टिंग लगता है एंड यू थिंक इट शुड बी स्पोकन ऑन दिस प्लेटफॉर्म विच इज़ एज मच आर्स एज मच इट इज़ योर्स, इसीलिए ज़रूर कॉल करें 972-235-5555. वी वुड रियली लव फॉर ऑल ऑफ यू टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द टॉपिक्स दैट वी टॉक अबाउट. सो वंस अगेन द नंबर इज 972-235-5555. ये है गपशप गली विथ मी टू.

You are tuned into Financial Radio 104.9 FM. हमारे स्टूडियो का नंबर है 9722355555. अगले सेगमेंट में आपके लिए फीफा कुछ अपडेट्स लेकर आती हूँ या कुछ इंटरेस्टिंग बात जो फीफा से रिलेटेड है वो लेकर आती हूँ. जून 11th को स्टार्ट होने वाला है. इट्स ऑल द एक्साइटमेंट इन द एयर. सो वी वांट टू ब्रिंग द एक्साइटमेंट ऑन द एयर वेव्स ऑफ फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM एज वेल, कंसिडरिंग वी आर वन ऑफ द होस्ट सिटीज. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे डैलस में जून 14 से गेम्स शुरू होने वाली है और हम आपके लिए कॉन्स्टेंटली कुछ इंटरेस्टिंग कुछ फीफा रिलेटेड बातें इस सेगमेंट में शेयर करते रहेंगे. लेकिन उसके अलावा हमारे आने वाले सेगमेंट्स में कुछ बातचीत का जो एक दरवाज़ा खुलता है एंड दैट लेट्स यू इन टू टेल अस अबाउट योर टू सेंस और समटाइम्स योर इनपुट दैट वी वॉन्ट, समटाइम्स योर सजेशन, योर कॉमेंट्स that we want, you know, for the conversation that we take up. So, bane rahe mere saath right here on Financial Radio 104.9 FM. Of course, aakhri segment mein kuch aise gaane play hote hain jo ki aaj hi ke din release hui ho.

0: गॉर्जियस पीपल इन दिस वन सॉन्ग, कियारा एडवानी और साथ में ऋतिक रोशन. किसको देखो, इसको देखो कि उसको देखो, मेरे ख्याल से दोनों को मजे से देखा और इसीलिए गाना भी बहुत मशहूर हुआ. ऐसे ही कुछ मशहूर गाने और नॉट सो मशहूर गाने भी हम आपके लिए लेकर आते हैं. एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू लिसन टू, बस सुनते रहिए.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Aaja meri gaadi mein baith ja.
5: Baith jaun? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
6: Wo thoda overheating tha.
5: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
11: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं.
12: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
10: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं हीरो.
14: मामू देखो क्या हो गया.
15: ओ क्या हो गया?
14: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
15: ओए जर्मन का कमाल है.
14: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
15: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
3: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
16: हे डैलस, स्टिल परफॉर्मिंग ओनली फॉर योर बाथरूम मिरर और द फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप? ना, इट्स टाइम टू लेवल अप. इफ यू गॉट टैलेंट, वी गॉट यू. व्हेदर यू सिंग, डांस, रैप, डू स्टैंड अप, प्ले एन इंस्ट्रूमेंट और हैव अ हिडन टैलेंट नोबडी सीज कमिंग. Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad. Registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
17: Tracks that put you on the right track.

0: तो हम कहीं जाते ही नहीं, हम सबको साथ लेते हुए जाते हैं और फीफा तो भाई सबको साथ लेकर चलने वाला मजा ही है। पूरी दुनिया में इसका जो एक नशा छाया हुआ है, इसी के बारे में कुछ बात करेंगे। सम अमेजिंग सेंड ऑफ्स बाय द कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग, उनके बारे में बताएंगे जो वायरल हो चुका है। एक गाना जो कि वायरल हुआ था सुल्तान साहब की रिक्वेस्ट पे, लेट्स प्ले दिस नेक्स्ट रिक्वेस्ट राइट हियर। और हाँ, जो पिछला गाना आपने सुना दैट वॉज अ वंडरफुल रिक्वेस्ट बाय सुरेश, एंड कीप सेंडिंग योर रिक्वेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन 9722355555। ये चलें सुल्तान साहब की रिक्वेस्ट पर राइट हियर ऑन फनी शो रेडियो 104.9 FM।
1: He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y da sentido toda mi vida con tu querer.
2: Name samcha, name jana. Jo bhi tumne mujhse kaha hai señorita, magar phir bhi na jaane kyun.

Fascinated with their country as well. और ये ग्लोबल अटेंशन और सोशल मीडिया पे तो ढेर सारा अटेंशन मिला है इसको. सबसे पहले बात करेंगे नॉर्वे की, हु इज मेकिंग अ मैसिव रिटर्न टू द वर्ल्ड कप आफ्टर लॉन्ग 28 ईयर्स. उनका एक सुपर वायरल एपिक वाइकिंग थीम फोटो शूट हुआ है नियर एंड ओस्लो शो लाइन, और लंबे बाल, हाथ में वो एक्स, एकदम ऑथेंटिक वॉरियर लुक के साथ उनकी जो एक उनका एक फोटोशूट हुआ है पूरी टीम का, दैट यू कैन सी ऑन द इंटरनेट ब्लोइंग अप लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दैट्स द सेंड ऑफ फॉर नॉर्वे. मूविंग ऑन टू साउथ अमेरिका, और 5 बार के जो हमारे चैंपियंस हैं ब्राज़ील, इनका भी एक अलग ही कुछ सेंड ऑफ हुआ रियो डी जनेरियो में के एयरपोर्ट पे, एंड 2 एयरपोर्ट फायर इंजन्स क्रिएटेड massive water arc salute over their Boeing aircraft as a symbolic blessing. और माना जाता है कि ये ritual team के लिए बहुत सारा good fortune लेकर आएगा. तो ये water baptism जो हुआ, that was for the team Brazil. वहीं दूसरी तरफ अगर Turkey के national team की बात करें हम वहाँ पे, तो उनको भी एक grand high energy farewell मिला इस्तांबुल में. उनके players की bus के पीछे 100 से भी ज़्यादा cars का एक लंबा convoy चल रहा था. And it's such sight to behold, really. It was decorated in national colors and blaring horns as they crossed the beautiful Bosphorus Bridge. Ab thoda cross-cultural vibes ki baat agar karein, to Japan's arrival in Mexico was greeted with an amazing local twist. Wahan ke fans ne Japanese squad ka welcome unhe cool cowboy hats पहन कर किया, ब्रिंगिंग द अल्टीमेट मल्टी नेशन टूर्नामेंट स्पिरिट टू लाइफ. स्पीकिंग ऑफ स्टाइलिश टीम अराइवल्स, अर्जेंटीनाज स्क्वाड इंक्लूडिंग द लेजेंड मेसी फ्लू इनटू कैंसस सिटी ऑन अ कस्टम प्लेन लोडेड विद स्पेशल ट्रिब्यूट डिटेल्स. और एयरप्लेन की जो टेल है उस पर मेसी का आइकॉनिक नंबर 10 पेंटेड था, और फ्यूसलेज पे 3 गोल्ड स्टार्स चमक रहे थे, और जेट का फ्लाइट रेफरेंस नंबर 1978 उनके पहले वर्ल्ड कप विन को डेडिकेट किया गया था. एंड दैट्स अबाउट अर्जेंटीना लेडीज एंड जेंटलमैन. Moving over to Africa, I will tell you about a couple of more send-offs here. लेकिन इस गाने के बाद सुनते हैं, लेकिन amazing कुछ send-offs जो हुए हैं, वही कुछ जो viral हुए हैं, उन्हीं के बारे में बातचीत. This is FIFA World Cup 2026 segment for all of you on Funisha Radio 104.9 FM.

0: और जो पागल हैं फीफा को लेकर, इवन म्यूजियम्स हैव फीफा फीवर. ऑल द सॉकर रिलेटेड कल्चरल इवेंट्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इन नॉर्थ टेक्सस दैट वन कैन गो एंड चेक आउट द म्यूजियम्स एंड दैट इज इन डैलस वेयर देयर इज एन एग्जीबिशन दैट यू कैन चेक आउट विथ योर किडोस. एक बहुत अच्छा एक यू नो एक क्या मिलेगा आपको कहना चाहिए मुझे एक अच्छा सा एक लुक इनटू ऑल द वर्ल्ड कप डिटेल्स. टारन काउंटी में भी है, डेंटन में भी है. सो ऑल दीज म्यूजियम्स दैट यू कैन चेक आउट फॉर फीफा.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
4: Paid for by Mark Hill for Mayor.
5: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
11: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
10: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
11: वेट, व्हाट?
12: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
12: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
14: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
15: Excuse me. It's called being loyal.
14: It's called being predictable.
15: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
14: And what's so special at Neon Cactus?
15: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
14: Not bad.
15: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
14: Okay, this I didn't expect from you.
15: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
16: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
17: हाँ।
16: घर रिलोकेट करनी है?
17: हाँ।
16: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
17: हाँ भाई हाँ।
16: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
18: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
12: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़ावे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़ावे, सुइट 205, फ्रिस्को।
0: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.
17: Tracks that put you on the right track.

0: वाना मेक श्योर लेडीज एंड जेंटलमैन आपके पास हमारे स्टूडियो का नंबर है क्योंकि आपको आपको सख्त जरूरत होगी इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशंस व्हिच स्टार्ट्स इन दिस सेगमेंट गोज ऑल द वे टू द नेक्स्ट सेगमेंट विद अ डिफरेंट टॉपिक दैट वील बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट सेगमेंट. लेकिन फिलहाल अगर इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ की तरफ से अगर आप ग्रोसरी हैम्पर जीतना चाहते हैं और अगर आप पिछले एक महीने में नहीं जीते हैं तो यू आर डेफिनेटली अ कैंडिडेट फॉर दिस. क्योंकि क्या है ना कि मैं आपको एक रिक्वेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि मंडे की शुरुआत ना बड़ी थकान के साथ होती है कई लोगों के लिए और अगर नहीं है तो दैट्स अ गुड थिंग. बट स्टिल व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट टू यू इज टेक अ डीप डीप ब्रेथ. एंड डू यू नो व्हाई दैट ब्रेथ इज एक्स्ट्रा स्पेशल टुडे? क्योंकि आज है 8 जून यानी कि वर्ल्ड ओशन डे एंड दैट ब्रेथ प्रॉबेबली यू जस्ट टुक. More than half of the ocean is in it was produced right out there in the ocean by tiny marine plants called phytoplankton, ladies and gentlemen. The ocean is literally the lungs of our planet. तो आपने जो अगर किया तो एक बार ocean को याद जरूर, समंदर को याद जरूर कीजिए. So even if you live thousands of miles away from the nearest beach, the ocean is keeping us alive. That is what we need to remember. Talk about a hidden superpower, right? और इसीलिए जो theme है इस साल का वो है reimagine. और ये reimagine theme for the reason that we have been always taking advantage of sea. लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो सिर्फ लेने का नहीं लेकिन देने का भी है you know with oceans कि हम भी उनका take care कर सकें जितना वो हमारा टेक केयर करते हैं हमारी हर रोज की जिंदगी में. एज आई सेड दे आर डीप अ पार्ट ऑफ आर एवरीडे ब्रीदिंग प्रोसेस. सो यस डू रिमेंबर एंड एक्सप्लोर मोर अबाउट ओशंस लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड यस राइट नाउ वी हैव ओनली एक्सप्लोर अबाउट 10% ऑफ ओशंस. वी एक्चुअली हैव बेटर मैप्स ऑफ द सर्फेस ऑफ मार्स देन वी डू ऑफ आर ओशन फ्लोर्स. It's like a whole different planet down there, jo abhi bhi undiscovered hai, ladies and gentlemen. And looking at how deeply the ocean is woven into our lives, it's no surprise ki hamari language mein bhi iska reflection ya iski baad aayi hui hai. And we use ocean and sea phrases all the time without even realizing. Yani ki wo jo ocean ya samandar se related jo proverbs or idioms hain, बस वही तो जानना चाहती हूँ. अगर समंदर से रिलेटेड यानी कि ओशन से रिलेटेड अगर कोई प्रोवर्ब या फिर इडियम अगर आपको याद आता है तो बस कॉल करें 972-235-5555. दैट्स द नंबर इन द स्टूडियो. इफ़ यू वांट टू विन फ्रॉम इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ जल्द से जल्द कॉल करें क्योंकि पहले हमारे कॉलर को मिलने वाला है ये तोहफा फ्रॉम इंडिया बाजार in Fort Worth. All right, I am getting ready to take my first caller on air. You are live on air. Bataiye. Hello, you're live on air. Can you hear me? Let's see if we can do it again. Let's see. Financial Radio, you're live on air. कोई दिक्कत है यहाँ पे तो अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रूर मुझे दोबारा से कॉल करें. इट इज़ द फ्रेजेस द प्रोवर्ब्स और इडियम्स दैट आई एम लुकिंग फॉर लेडीज़ एंड जेंटलमैन. ज़रूर कॉल करें मुझे राइट हियर टू टेल मी इफ़ यू नो ए प्रोवर्ब और एन इडियम जिसमें कि समंदर या ओशन का मेंशन है. यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाँ, बूंद बूंद करके सागर भरता है.
0: बिल्कुल. और इसका मतलब क्या होता है?
1: अरे छोटी छोटी चीजों से बड़ी बातें होती है.
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. मैंने सोचा कि ये बिल्कुल लिसनर्स तक बात पहुंचा दी जाए. अगर नहीं इन्होंने यूज किया तो वो यूज करना भी उन्हें आना चाहिए. सर आपका नाम क्या है?
1: रवि.
0: Ravi, you have just won for yourself from India Bazaar in Fort Worth. Thank you very much. Can you please hold the line? मैं off air आपकी सारी details लेती हूँ. ठीक है?
1: Sure.
0: Thank you, G. Thank you so much. I really appreciate. And Ravi को मिल चुका है ये इनाम. लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई और idiom या कोई और proverb मुहावरा या कहावत अगर आपके दिमाग में है तो जरूर कॉल कीजिएगा. It is World Ocean Day. We thought we'll celebrate it like this.

0: लिसन आज समंदर ये जो शब्द है और ये जो ओशन की बातें हैं, इट इज ड्रेंच्ड इन विजडम. और ये कैसे, वो हमारे इडियम्स और प्रोवर्ब्स में, यानी कि हमारे क्या कहते हैं उसे, मुहावरे और कहावतों में बहुत सारी चीज़ें हमें जो डायरेक्टली नहीं समझ में आती, ऐसी इनडायरेक्ट बातों से हमें समझ में आती है. एंड रवि हैज़ ऑलरेडी वन फॉर हिमसेल्फ. तो जी हाँ, वो इंडिया बाज़ार फोर्ट वर्थ का जो ग्रोसरी हैम्पर है, ये इनके नाम तो मैंने कर दिया. एंड आई वॉज ग्लैड टू हियर कि वो आसपास ही रहते हैं, तो जिसका मतलब है या तो आप फोर्ट वर्थ में ही रहते हो, या केलर में, या हर्स्ट में, या हैसलेट. लेकिन इसके बियॉन्ड भी लोग जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर. बट इट इज़ कन्वीनियंट फॉर दोज पीपल देयर, एंड दे आर हैप्पी टू हैव इंडिया बाज़ार अराउंड देम. और यहाँ पे हमारे जो रवि साहब है वो जीत चुके हैं. और मुहावरों और कहावतों के बारे में तो क्या ही कहा जाए, बिकॉज देर आर सो मैनी. गागर में सागर भरना, समंदर में बूंद के बराबर, और जो उन्होंने कहा बूंद बूंद से सागर बनता है, बिल्कुल सही बात है. सच्चा मोती समुद्र की गहराई में मिलता है, यू नो दोज काइंड ऑफ प्रोवर्ब्स. हु कैन फॉरगेट, एंड अ ड्रॉप इन द ओशन, देर आर प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी, स्टिल वाटर्स रन डीप. कितने सारे ओशन पे हैं यार, मतलब हमारी जुबान में भी ओशन का कितना इंपॉर्टेंस है. बस आज वर्ल्ड ओशन डे पे वही याद करना चाहती थी आप लोगों के साथ.
1: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
3: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
2: Kya matlab?
3: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
2: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
3: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
2: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
5: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering, or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories, and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
6: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
6: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
7: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes, and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
9: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
10: भूख लगी है या बस कुछ exceptional खाना है?
11: Street style chaats, rich Awadhi flavors, and that classic butter chicken you keep going back to. All under one roof at Page 3 Eatery. Honestly, ये सिर्फ खाना नहीं है. It's what your mood is actually craving.
12: A quick bite, a perfect lunch ambience, and an evening that just flows into the night. You don't go just anywhere. You go to Page 3, Hub 121 McKinney.
13: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, It's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
14: Tracks that put you on the right track.
0: हर ट्रैक को सुनने का भी ना अपना एक अलग मजा होता है अगर राइट कंपनी हो और वो कंपनी अगर आपके बेस्ट फ्रेंड की हो तो क्या ही बात है. आज नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे पे कुछ कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ. तो बिल्कुल सही जगह पे है 972-235-5555. लेट्स गेट रेडी टू टॉक अबाउट आवर बेस्ट फ्रेंड्स. दिस इज गपशप गली विथ मी टू ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM.

अच्छा, इतने ज़बरदस्त म्यूज़िक के बाद कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों, क्योंकि वर्ल्ड म्यूज़िक डे आ रहा है और हम अपने तरह से फनेशिया जो है बहुत स्पेशल तरीके से इसे सेलिब्रेट करना चाहती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर मूड, हर ओकेशन के लिए, हर मोमेंट के लिए, हर रिश्ते के लिए कुछ स्पेशल गाने होते हैं, चाहे वो मतलब दिल टूटा हो या प्यार में डूबे हो, चाहे वो शादी की बात हो या शादी की विदाई की बात हो या शादी टूटने की बात हो. आई मीन आई शुडंट से इट इन द सेम लाइन एक्चुअली, लेकिन बात ये है कि हमारे बॉलीवुड में या बियॉन्ड दैट एज वेल वी हैव सो मैनी सॉन्ग्स जस्ट एब्सोल्युटली फिटिंग आर मूड्स, है ना, बिल्कुल ऐसा कि मतलब लगे कि यार दिल की बात ही बोल दी इस गाने ने. तो सो वी वॉन्ट टू नो योर टॉप पिक्स. ठीक है, जून 1st से शुरू हो चुका है, जून 15 तक है और ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये गूगल फॉर्म भरो और नॉमिनेट करो अपना favorite gana across different music categories. Now, Funasia will select the most loved songs from each genre, and the song that has become the heartbeat of millions will be announced, and the winner also, jo ki hai June 1st ko World Music Day. To us din hum announce karne wale hain. Every Funasia show will be dedicated to a different music genre on that day, featuring the winning selections. And here's the exciting part: the listeners whose song choice make it into our final playlist, the most will win exciting prizes. Now that's something special for all of you to remember. तो क्या करना है, बस वंस अगेन वो याद दिलाना चाहती हूँ, गूगल फॉर्म भरना है और नॉमिनेट करना है अपना फेवरेट गाना इन द डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज दैट हैव बीन लिस्टेड देयर. दैट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, सो सेलिब्रेट करेंगे हम ये म्यूजिक वर्ल्ड म्यूजिक डे आप लोगों के साथ ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM. आप जरूर जाएं funisha.net पे, या साथ ही साथ फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया पेजेस को. अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स और चाहिए तो वहीं पे आपको मिल जानी है. स्प्रेड इट लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज म्यूजिक इज व्हाट ब्रिंग्स अस हियर. तो ठीक है, एक और गाना हम ये नाम करने वाले अनिल के, जिन्होंने दिल चाहता है का ये गाना चूज किया है टू बी प्लेड. एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे और यहाँ पे बेस्ट फ्रेंडशिप की तो बात थी दिल चाहता है मैं. तो एक सवाल जो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ, एक पूछने वाली हूँ, जस्ट क्यूरियस दैट आई एम अबाउट द बेस्ट फ्रेंड्स दैट वी हैव इन आर लाइफ, उनके बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ. और यहाँ पर आप लोगों को एक ना मतलब सिंपली याद करने पर मजबूर करना चाहती हूँ, द बेस्ट फ्रेंड दैट यू रिमेंबर फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, यानी कि वो किंडरगार्टन के बेस्ट फ्रेंड हो या उससे भी पहले के, वो पहला बेस्ट फ्रेंड आपकी लाइफ का कौन रहा है. अगर मुझे भी याद आए तो मैं ज़रूर बताऊँगी. बाकी सवाल कुछ और है, वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जस्ट अ बिट. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

एक नए लोकेशन की बात करने वाली हूँ. फॉर 13 ईयर्स टेक्सास प्राइमरी क्लिनिक हैज प्राउडली केयर फॉर आर कम्युनिटी. अब एक ब्रांड न्यू नाम और साथ में सेकंड फ्रिस्को लोकेशन लेकर आ रहे हैं ये. दे आर इंट्रोड्यूसिंग लुनॉक्सी मेडिकल. इफ यू हैवंट हर्ड अबाउट इट, गो चेक आउट, क्योंकि हम केवल इनके बारे में बता सकते हैं, लेकिन ये जाके समझना और उन वो वाइब समझना और उन लोगों से बातचीत करके आप देखिए व्हाट यू फील अबाउट द प्लेस. फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, लुनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ऑल अंडर वन रूफ. और इंसान को क्या चाहिए जब हेल्थ केयर की बात हो तो एक ही जगह पे सब मिल जाए तो नेकी और पूछ पूछ, राइट. दे आर ओपन 7 days अ वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM. डू रिमेंबर, वॉक इन एनी टाइम, कोई अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन एक जो इंसान है जो हमारी ज़िंदगी की सख्त ज़रूरत है वो है हमारे बेस्ट फ्रेंड्स. और आज नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स पे आप क्या करने वाले हैं ये मैं आप पे छोड़ती हूँ. अगर दूर है तो मे बी फ़ोन कॉल्स, लेकिन अगर आसपास है यानी कि आपके खुद के शहर में है तो बनता है कि इसको आप बहुत स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करें. क्योंकि क्या है ना कि होते बड़े कमीने भी हैं मतलब हमें मुश्किल में भी डालते हैं इन अ फन वे. जो रियली मुश्किल में डालते हैं ना वो बेस्ट फ्रेंड आपके हो नहीं सकते, ठीक है. तो वो रियली गुड बेस्ट फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ मैं, द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड की बात कर रही हूँ, कि जो मतलब मजे लेते हैं हमारे, लेकिन अगर कोई सवार हो जाए हम पे ना तो वो मतलब लड़ने भिड़ने को आ जाते हैं. द पीपल हु आर रियली क्लोज टू आवर हार्ट्स आर बेस्ट फ्रेंड्स दैट वी आर टॉकिंग ऑन दिस नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे. तो मुझे आपसे कुछ जानना है. मुझे ना मेरी क्यूरोसिटी थी कि भाई मैं ये जानूँ आप लोगों से कि मतलब क्या होता है कि जो जिनसे आप फ्रेंडशिप रखते हो ना, मतलब जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स जो है उनकी, मैं ये फ्रेंडशिप की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, राइट. अपने एब्सोल्यूट नंबर वन, अपने राइड और डाई के बारे में सोचिए आप, ठीक है. पर्सन हु विल स्टिक बाय योर साइड थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है ना. आर दे योर लिटरल ट्विन, मतलब क्या आप दोनों को एग्जैक्टली सेम चीज़ें पसंद आती हैं, यू नो सेम जोक्स पे आप हंसते हो, आप सेम चीज़ें ऑर्डर करते हो. डू यू नीड योर बेस्ट फ्रेंड टू बी एग्जैक्टली लाइक यू, यानी कि सेम क्वालिटीज़ का होना, सेम पेज पे होने के लिए. आपको लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो है आपके फ्रेंडशिप में, या आपको लगता है कि बिल्कुल पोलर ऑपोजिट है आपके फ्रेंड. जैसे हो सकता है कि आप एक लाउड केओटिक एक्सट्रोवर्ट हो, लेकिन ऐसा इंसान जो कि बहुत मतलब स्पॉटलाइट भी चाहता हो, ऑल दोज थिंग्स, वेयर एज द अदर पर्सन इज जस्ट काम, यू नो दैट क्वाइट इंट्रोवर्ट. आर यू द इम्पल्सिव प्लानर एंड दे आर द वन कीपिंग यू ग्राउंडेड? इज इट एक्चुअली दैट फैक्टर दैट अट्रैक्ट्स यू एक्चुअली? कि मतलब वो कहते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स. ये फ्रेंडशिप में भी कई लोगों के लिए ट्रू होता है, टू फिल इन द गैप्स इन वेज, यू नो कंप्लीट द पजल ऑफ सॉर्ट्स दैट वन कैन से. तो मुझे आप बताइए आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में कि वो पोलर ऑपोजिट है या फिर बिल्कुल आप ही की तरह हैं. तो मुझे नाम बताइए अपने बेस्ट फ्रेंड का और बताइए कि क्या मिजाज है उनके, बिल्कुल ऑपोजिट कि बिल्कुल मिरर इमेज आपके. You are listening to Funnyja Radio 104.9 FM. और इस जवाब के बदले में रेड हॉट चिली पेपर की तरफ से बिल्कुल गर्मा गर्म, बिल्कुल हॉट डिलिशियस फूड दैट यू कैन गेट देयर, एंड वी विल बी गिविंग यू दिस गिव अवे, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो ज़रूर कॉल करें अपने बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंडशिप के लिए. किस तरह के फ्रेंड हैं आपके पास, आपके बेस्ट फ्रेंड का जो है वो क्या है मिजाज, हम ये जानना चाहते हैं. Until then, another friendship movie that we absolutely enjoyed, that I want to play this song from.

0: यू रिमेम्बर, ये गाना इस फिल्म में तब आया था जब ये तीनों डिसाइड कर लेते हैं कि ये मिलना है इनको, ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर एंड अभय देओल, दे डिसाइडेड दे विल मीट अप, और फिर उसके बाद हंगामा शुरू होता है फिल्म में, एंड दैट्स अ फैंटास्टिक मूवी टू वॉच, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ऑन नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे. तो चलिए, लेने वाली हूँ मैं कॉल्स ऑन एयर एंड पता करने वाली हूँ कि भाई कैसे आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइएगा, और आप बताइएगा कि बिल्कुल आपके मिरर इमेज हैं कि बिल्कुल पोलर ऑपोजिट है. मैं जानना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं ऑन एयर लेना चाहती हूँ. लेट्स फाइंड आउट यार कि फ्रेंडशिप कैसे थ्राइव करता है. यू आर लाइव ऑन एयर.
1: So hi, my name is Kiran, and for me, we are the exactly same. And my best friend name is Sunita, and she lives in Dubai. और हमारा ये है कि she has been like my strong support since my education. Like we have done our study together, and whenever I was like sad or जाती थी, देन शी विल बी लाइक सपोर्टिंग मी, कॉलिंग मी, हेल्पिंग मी इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ. एंड टू द एक्सट्रीम, जब हम मेरे लिए लाइक लड़के ढूंढ रहे थे, मेरे पापा, आई बिलोंग फ्रॉम स्मॉल विलेज, तो वहां पे इंटरनेट नहीं था, एंड शी वॉज एट दैट टाइम पुणे, शी स्टार्टेड looking on the matrimony and shortlisting so some of the boys, getting the info during her job hours just to help me out.
0: How so sweet is that? My goodness.
1: So that was the sweetest, and we are still in touch. We still talk, though we are like far away from each other. But whenever I visit India and she comes, by that time coincidentally we just meet and talk our endless gossip.
0: How amazing is that, Kiran? And tell me your best friend's name again.
1: Her name is Sunita.
0: Sunita, yes, for Kiran and Sunita, this next track and Red Hot Chili Pepper ke taraf se aapke liye, aur aapki best friend Sunita ko yaad karte hue, let's give you either dry chili chicken ya chili baby corn ya fir Dallas ka best butter chicken. Apni friend ko yaad karke zaroor daba ke khaiyega, theek hai?
1: Thank you.
0: Please hold the line for me, and I'm going to take all your information off air. How wonderful is it to have the bestest of the friend by your side? तो बिल्कुल mirror image हैं, बिल्कुल उन जैसी हैं, यानी कि किरण जैसी हैं. अगर आपके फ्रेंड्स के बारे में भी, बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना चाहते हो, you know the lines are open. 972-235-5555.

0: एक जल्दी से आखिरी कॉल लेकर जाना चाहती हूँ. यू आर लाइव ऑन एयर. जल्दी से अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताएं. वी हैव जस्ट 30 सेकंड्स लेफ्ट ऑन द क्लॉक. हाँ
1: Yes. Hi, I have 5 best friends. Ooh. We just met in Dallas in 2022. It's a girl gang, a mom's gang.
0: Oh, wow.
1: And I had a fantastic time with them, and we're always there with each other through thick and thin.
0: How amazing is that? A big shout out to all your girlfriends, and tell me your name and your girlfriend's name very quickly. 10 seconds to go.
1: Yeah, my name is Neha Doshi. I have another friend, Neha, Trupti, Namrata, Anu, and Deepti.
0: A big shout out to all of them. God bless you all. Happy Friendship Day to all.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Heere moti, main na chahun.
9: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2, get 1 free offer. Tanmay Jewel in Irving. Diamond rings, pendants, earrings or bridal jewelry per buy 2, get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price per. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
10: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route. Rerouting.
10: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
11: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
10: Kyun?
11: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials. Authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
10: Achha, to seedha wahi le chalo.
12: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
11: Your new destination has arrived.
13: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
19: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
16: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड
20: no compromises.
21: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
22: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
23: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio.
24: Tracks that put you on the right track.

अक्षय कुमार एंड शिल्पा शेट्टी इन दिस सॉन्ग. और ये गाना जैसी वो लगती थी तब इस गाने में, वैसी ही आज भी लगती हैं. शी टर्न 51 टुडे. इट इज शिल्पा शेट्टीज बर्थडे टुडे, जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे. द रीजन बीइंग यार, द वे शी हैज़ री इन्वेंटेड हर सेल्फ, राइट फ्रॉम बॉलीवुड ग्लैमरस क्वीन टू दिस वेलनेस मोगल दैट शी हैज़ इन्वेंटेड हर सेल्फ एज, क्या बात है यार. कूडोस टू दिस वुमन, जो कि बहुत सारे फिटनेस हेल्दी रेसिपीज भी शेयर करती हैं और साथ में अपना फिटनेस रूटीन भी शेयर करती रहती हैं टाइम टू टाइम फॉर हर फैंस. दे नो दैट हाउ इनक्रेडिबल शी इज. सो यस, हैप्पी वाला बर्थडे टू शिल्पा शेट्टी. और उनके साथ इस गाने में अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार की मॉम इन लॉ यानी कि डिम्पल कपारिया भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. लेट्स प्ले दिस अनदर आइकॉनिक गाना. जैसे ये गाने का म्यूजिक सुन के ही ना आपको इमीडिएटली शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार की याद आ जाती है ना, वैसे ही इस अगले गाने को सुन के ऋषि कपूर के साथ डिम्पल कपारिया सामने आ जाती है. हर फर्स्ट फिल्म एज द लीड एट द एज ऑफ 16, डिम्पल कपारिया सेलिब्रेटिंग हर 69th.

You are listening to the songs from movies जो आज के दिन रिलीज हुई. तो मिस्टर नटवरलाल आज के दिन 1979 में रिलीज हुई थी, इसीलिए तो मैंने इतने प्यार से ये गाना लगाया आप लोगों के लिए. होप यू ऑल enjoyed it, that classic, ladies and gentlemen. अब जो अगला गाना प्ले करने वाली हूँ, इट इज अ क्लासिक फ्रॉम 80s विच वॉज री इमेजिन फॉर अ मूवी दैट रिलीज ऑन दिस डे इन द ईयर 2012. फिल्म का नाम है शांघाई और शांघाई को डायरेक्ट किया था दिबाकर बैनर्जी ने. और इस फिल्म में प्रोसनजीत चैटर्जी के साथ साथ इमरान हाशमी, अभय देओल, फारूक शेख, काल्की केकला, ये सारे अलग अलग यूनिवर्स के एज़ इफ नाम. और अटेम्प्ट एक्चुअली यही था दिबाकर बैनर्जी का कि वो एक स्टैंडर्ड बॉलीवुड फ्रेमवर्क में, जैसे कि एक होता है ना कि टाइप कास्ट हो जाते हैं हीरो हीरोइन, उससे कम्प्लीटली अलग कुछ एक्टर्स को लेकर आना चाहते थे अपने इस फिल्म के लिए, विच वॉज दिस पोलिटिकल थ्रिलर शांघाई, फिल्म का नाम वंस अगेन. और उन्होंने वो किया जो शायद अक्सर डायरेक्टर्स नहीं करते हैं, जैसे कि अभय देओल जो कि एक इंडी डार्लिंग थे, उनको उन्होंने इमरान हाशमी के साथ एक फिल्म में रखा. यू नो इमरान हाशमी जो यू नो मास कमर्शियल स्टार के तौर पे जाने जाते थे और जाने जाते हैं इनफैक्ट, और उनको बिल्कुल अलग ऐसे किरदारों में डाला. और साथ में काल्की केकला, थिंक अबाउट द आर्ट हाउस काइंड ऑफ एक्ट्रेस दैट शी इज, इन सब अलग अलग जॉनर्स के एक्टर्स को उन्होंने एक साथ कास्ट किया. दैट इट्सेल्फ वाज अ वेरी यूनिक थिंग एंड डेफिनेटली वेरी यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ अ मूवी दैट पीपल गॉट टू वॉच from his camp, and definitely a movie that drastically changed the you know sort of a landscape of Bollywood films. और डिफरेंट एक्टर्स का को एग्जिस्ट करना, एक वो मेसी क्लैशिंग लेयर्स इंडियन सोसाइटी का डिपिक करना, वो सारा कुछ एक जो स्क्रिप्ट में था वो इस तरह से उन्होंने उतारा था. शांघाई इज डेफिनेटली ए गुड वॉच लेडीज एंड जेंटलमैन. इट इज़ ओवर द टाइम एक कल्ट क्लासिक के तौर पे अब ये जाना जाता है, जिसमें ये गाना जो मिस्टर इंडिया का रिक्रिएट किया था माइकी मैक्लैरी ने.

वाना मेक श्योर कि आप सब जो कि लंच के बारे में सोच रहे हैं वो तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बारे में जरूर एक बार सोचें, क्योंकि गार्लिन में है और अगर आप आसपास हैं तो फिर तो बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वो स्पाइसी और नॉट सो स्पाइसी ऑल्सो, कुल मिला के ब्यूटिफुल स्पाइसेस दैट दे हैव इन देयर रिच करीज एंड ऑल द नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स दैट यू हैव, वो तंदूरी प्लेटर्स से लेकर वो कबाब्स, वो करीज, वो सारी चीज़ों में जस्ट राइट स्पाइसेस दैट दे यूज दैट यू कैन गेट एट देयर्स, एवरी प्लेट फील्स लाइक इज सेलिब्रेशन एट देयर्स. तो जरूर जाएं तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट, ये है गार्लिन में, अपने एक आम दिन को बहुत ही खास बनाए विथ तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट. एंड दैट इज एक्सपीरियंस एग्जैक्टली वी गेट यू हियर ऑन फनीशर रेडियो 104.9 FM. माइकी मैक्लेरी की वो री इमेजिनेशन, और उसी के साथ एक और गाने पर लेकर जाने वाली हूँ जो कि जी हाँ लकी अली के ब्रदर इन लॉ, एक्स ब्रदर इन लॉ माइकी मैक्लेरी के दिमाग की उपज और टैलेंट की उपज कहना चाहिए मुझे.

0: छोड़ जाने के ना कई रीजंस हो सकते हैं. अब अगर एक्सीडेंट में आप पड़े हो या आपको आपको इंजरी है, तो फिर आप ऑब्वियसली उसमें स्ट्रेस में आप कैसे रात को आराम से सो पाओगे, राइट? चाहे वो कार एक्सीडेंट हो, स्लिप और फॉल इंसिडेंट हो या वर्क प्लेस इंजरी, अटर्नी ओमर ख्वाजा आपके साथ हैं. डू रिमेम्बर दैट एंड दे विल हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. तो ज़रूर याद रखें कि उन्हें कॉल करना है, फ्री कंसल्टेशन भी मिल जाएगी आपको एंड यू विल गेट द कॉम्पनसेशन फॉर श्योर, बिकॉज यू डोंट पे अंटिल यू विन. दैट्स द प्रॉमिस दैट दे कम विद. Do log on to attorneyomar.com. That's all the show I have for you today. This is me.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Is sheher ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
6: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
8: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
7: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
8: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
3: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia, get $100 off your first month.
9: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस.
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
9: ये क्या होता?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
11: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन.
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
13: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी. अब टेंशन का टाइम गया. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर. फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू. कॉल 214-666-2259 और विजिट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर डॉट कॉम. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
14: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir about 2025 digital asset or crypto fund.
15: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
16: Kaun hai ye log? Kahan se aate hain ye? जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

A very good afternoon, my desi people. आप सुन रहे हैं Fun Asia Radio 104.9 FM और मैं हूँ RJ Simmi. लेके आई हूँ आपका फेवरेट शो The Afternoon Adda. और आज जैसे कि आपको पता है आज मंडे है और आज हम बात करने वाले हैं मंडे मंत्रास के बारे में. जी हाँ, वीकेंड की मस्ती खत्म हो चुकी है और मंडे ने फिर से एंट्री मार ली है. लेकिन आज हम मंडे को कोसेंगे बिल्कुल नहीं, बुरा भला भी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे ऐसे मंत्रास की जो हर मंडे को एक नई किताब के पहले पन्ने जैसा एक नया एक्सप्लोरेशन, एक नई अपॉर्चुनिटी देता है. पिछले हफ्ते की गलतियां, अधूरे काम और मिक्स्ड अपॉर्चुनिटीज को पीछे छोड़ के आज हम नए जोश के साथ शुरुआत कर सकते हैं. आज के शो में हम शेयर करेंगे छोटे छोटे मंडे मंत्रास जो पूरे हफ्ते को पॉजिटिव बना देंगे. दोस्तों, बाय द वे, आपका मंडे मंत्र क्या है? आप कैसे हैंडल कर रहे हैं इन मंडे ब्लूज को? आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं 972-235-5555 पे. Say whoa!

बैक टू बैक हमने हॉली हॉली टाइप सॉन्ग सुने, एकदम मजा आ गया, मंडे मूड को एलिवेट मिल गया है एक तरह से। और अभी अभी हमारे लिसनर का भी कॉल आया था पीसीजी का, जिन्होंने बताया कि उन्हें तो बस रेडियो सुन के ही मजा आ जाता है और उनका मंडे ब्लूज जो है मंडे पॉजिटिविटी में बदल जाता है। मंडे का सबसे बड़ा प्रेशर बेसिकली ये होता है कि पूरे हफ्ते के काम को हम सोचते रहते हैं, प्लान करना पड़ता है, लेकिन मंडे मंत्रा ये कहता है कि एक दिन में पूरा पहाड़ नहीं चढ़ना, आज के टारगेट पर फोकस करें। आज जिम जाना है, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, 20 मिनट कर लीजिए। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो बस पहला स्टेप तो ले लीजिए, घर साफ करना है तो एक रूम से स्टार्ट कीजिए। छोटी छोटी जीत बड़ी बड़ी खुशियां देता है और यही है आज का मंडे मंत्रा नंबर वन। आपसे और मैं जानना चाहती हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, आपका मंडे मंत्रा क्या है, बताइए हमें, कॉल कीजिए 972-235-5555 पे।

आई थिंक मंडे भी ना यही रोता होगा कि मैं ऐसा क्यों भाई, मैंने क्या बिगाड़ा है, किसी का लोग मुझे इतना क्यों कोसते हैं। और देखा जाए तो उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती बस इतनी है कि वो वीकेंड के बाद आ गया। उसकी जगह कोई भी होता तो उसका यही हाल होता। लेकिन आज हमने डिसाइड किया है कि हम मंडे को बुरा भुला नहीं कहेंगे, बल्कि मंडे को जीने का एक नया तरीका ढूंढेंगे और मंडे मंत्रास की बात करेंगे। पहला मंत्र ये था कि छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें। और जो दूसरा मंत्र है वो ये है कि हम मंडे को ना ग्रैटिट्यूड फॉर्म में देखें। हम कैसे सोचते हैं कि ऑफिस जाना है, ट्रैफिक फेस करना है, असाइनमेंट पेंडिंग है, मीटिंग अटेंड करनी है, लेकिन एक बार सोचिए कि कितने लोग हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपनी फैमिली से दूर हैं, और कई लोग तो हेल्थ इश्यू से भी परेशान हैं। तो इस मंडे को अगर हम थोड़ा ग्रैटिट्यूड फॉर्म में ले तो मंडे के साथ थोड़ा जस्टिस तो हम भी कर देंगे, है ना?

This was a trending track from Pati Patni or Wo. And you are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM with me, yani ki RJ Simi. And the show's name is Afternoon Adda. Today, Monday, we are talking about Monday mantras. And the last mantra of the day is that let's be kind and nice to each other. Because this Monday is not tough for you, it is not just for me. It is for everyone, for your boss, for your classmate. आपके कैशियर टीचर ड्राइवर सब के लिए है. तो अगर आज हमारा मूड खराब है तो हम कोशिश करें कि हम दूसरों का मूड ना खराब करें. लेट्स बी नाइस एंड काइंड टू ईच अदर. सबसे प्यार से बात करें. सबके लिए टफ है और इसको चैलेंज की तरह लेते हैं. लेट्स ट्राई टू बी काइंड. ओके गाइस एंड एंजॉय द नेक्स्ट ट्रैक एंड डू नॉट फॉरगेट वी हैव गिव अवेज कमिंग अप. सो स्टे ट्यून्ड.

वैसे तो गिव अवे भी घोड़े पे सवार होके आ चुका है आपके पास। अगर आपने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड मुफ्त। तो मैं सवाल पूछ लेती हूँ, और सवाल ये है कि शिल्पा शेट्टी ने किस रियलिटी शो को जीता था? यूएस के रियलिटी शो की बात हो रही है कि उन्होंने किस यूएस रियलिटी शो को जीता था, और आज उनका बर्थडे है तो सवाल भी उनसे स्पेशल ही, उनके अराउंड ही पूछा है मैंने, और अभी उनके लिए एक बहुत ही उम्दा सा जो उनका वन ऑफ द हिट बेस्ट ट्रैक है वो प्ले करने जा रही हूँ। अगर आपको जवाब पता है तो आप कॉल कीजिए 972-235-5555 पे।

What a lovely track. मतलब शिल्पा शेट्टी की बात हो और ये सॉन्ग आपके दिमाग में ना ऐसे ऑटोमेटिकली आ जाता है, चिरक के दिल मेरा। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी की ही बात हो रही है क्योंकि आज उनका बर्थडे है। और आज का सवाल जो था गिव अवे का, वो भी उन्हीं के अराउंड था कि वो कौन सा यूएस रियलिटी शो है जिनसे वो बहुत खासा पॉपुलर हो गई थी ग्लोबली और उन्होंने उस शो को जीता था। वो है सेलिब्रिटी बिग ब्रदर। जी हाँ, बिग बॉस का यूएस वर्जन। और सबसे पहले सही जवाब दिया है मोनिका ने। सो कांग्रेचुलेशंस मोनिका, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। और फन पिज्जा किचन ना मतलब बहुत ही खास है। अगर आप पिज्जा लवर हो तो आपको यहाँ पे जरूर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस हैं, वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन। अगर आप वेजी लवर हो तो अचारी पनीर पिज्जा जरूर ट्राई करें, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो तंदूरी चिकन पिज्जा है ना आपके लिए एकदम परफेक्ट स्लाइस होगा उसका पिज्जा का। तो आप जरूर जाएं और फन पिज्जा किचन की अगर आपको और जानकारी चाहिए उनके मेन्यू के बारे में, उनके डिशेस के बारे में, तो आप funpizzakitchen.com पे भी जा सकते हैं फॉर द डिटेल्स के लिए। और शिल्पा शेट्टी के लिए एक और गाना बजा देते हो यार, एक और पॉपुलर ट्रैक।

0: लो आ गई मैं, कब से आप बुला रहे थे मुझे, लो आ जा रही, आ जा रही। और मैं हूँ आरजे सिम्मी और आप सुन रहे हैं फनीशर रेडियो। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, अमन फ्रॉम उरा डेट रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। हाय अमन।
1: हेलो फनीशिया, सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार। दूसरे हफ्ते का पहला दिन मुबारक हो। मंडे है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन खैर मंडे के साथ साथ एक बात याद करा दूं कि इस हफ्ते तो क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट की चिट्ठियां आ ही चुकी होंगी या आने वाली होंगी। अगर आ गई हैं तो इस हफ्ते स्केड्यूल करने से पहले, उनको मिनिमम पेमेंट देने से पहले उरा को याद कर लीजिएगा। उरा आपके क्रेडिट कार्ड्स की, सारे क्रेडिट कार्ड्स की एक किस्त बना देगा, आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवा देगा। पूरा आपको कोई लोन नहीं देता है, लेकिन आपके कर्जे को आधा माफ करवाने में आपकी मदद करता है। सो वी आर अ डेट सेटलमेंट कंपनी जो नेगोशिएट करती है आपके बिहाफ पे आपके कर्जे को आधा माफ करवाने में। तो आपका कर्जा आधा माफ हो जाएगा, इंटरेस्ट पूरा माफ हो जाएगा, लेट पेमेंट्स खत्म हो जाएंगी और आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि आपके बिजनेस के क्रेडिट कार्ड हों, स्टोर के क्रेडिट कार्ड हों, इसके अलावा कोई पर्सनल लोन हो, पर्सनल लोन मीन कोई रेनोवेशन के लिए लोन लेता है, कोई गाड़ी के लिए लोन लेता है, जो पर्सनल लोन यानी गाड़ी का लोन नहीं, जो पर्सनली कोई लेता है, अगर या फिर आपने कोई फॉरेन ट्रिप के लिए आपने लोन लिया है या शादी के लिए लोन लिया है, शादी तो गई हो पर लेकिन अब लोन तो आपको उतारना है, तो उसको भी अगर आप माफ करवाना चाहते हैं आधे से ज्यादा तो उरा को आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर गाड़ी टोटल हो गई है, मसलन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी इंश्योरेंस ने पूरा क्लेम नहीं दिया लेकिन गाड़ी टोटल हो गई, या गाड़ी रीपोजेस हो गई बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, उसका कर्जा भी आपके सर पर है, उस तरह के लोन्स को भी नेगोशिएट करके आधे से ज्यादा माफ करवाया जा सकता है, लेकिन गाड़ी रीपोजेस हो जानी चाहिए, आपके पास नहीं होनी चाहिए। सो आप कॉल कीजिए उरा को, हमारा टोल फ्री नंबर है बहुत इजी 1-888-888-9914, 888-888-9914, या मुझसे भी सीधी बात कर सकते हैं, मेरा डायरेक्ट नंबर ले लीजिए। आप हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं मुझसे और हम लोग क्या कहते हैं फ्री एनालाइज करके देंगे कि आपका डेट सेटलमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। जस्ट गिव अस अ कॉल, मेरा नंबर है 9167763555, 9167763555, अगेन 9167763555। हमारी वेबसाइट है www.ura.org। सो डोंट फॉरगेट, मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल जरूर कीजिएगा ताकि आपका फायदा हो सके।
0: थैंक यू सो मच अमन, आई होप हमारे लिसनर्स को इससे फायदा हो एंड विल कनेक्ट विद यू नेक्स्ट टाइम।
1: थैंक यू।
0: एंड अच्छे अच्छे सॉन्ग्स के लिए तो आपको पता ही है क्या करना है, ट्यून इन रहना है बस फनीशिया 104.9 के साथ।

आ गई हूँ मैं वापस लेके आज के मौसम का ताजा ताजा हाल। जी हाँ, वीकेंड में तो हल्की फुल्की बारिश ने मौसम को बेहद लुभावना बना दिया था, लेकिन जाने कि अब आज का क्या रहेगा। तो आज डैलस में जब दिन शुरू हुआ था तो काफी वार्म और स्लाइटली ह्यूमिड भी था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी अपना फुल रंग दिखलाएगी। एकदम वैसे होता है ना कि अभी अभी मैं बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। बिल्कुल गर्मी उसी मोड में है। दोपहर तक टेम्परेचर रीच करेगा अराउंड 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज मिड 90 फ़ारेनहाइट। और हाँ दोस्तों, ये सिर्फ नॉर्मल गर्मी नहीं है बल्कि टेक्सस हीट फील के साथ ह्यूमिडिटी भी ऐड हो रही है, तो इसका रियल फील थोड़ा ज्यादा इंटेंस हो सकता है। आफ्टरनून में कुछ एरियाज में पार्टली क्लाउडी स्काइज रहेंगे और हल्का सा चांस है आइसोलेटेड शावर्स या थोड़ी बहुत थंडर एक्टिविटी का, लेकिन ज्यादातर जगह पर दिन जो है ड्राई और सनी ही रहेगा। शाम के टाइम टेम्परेचर धीरे धीरे ड्रॉप करेगा और आपको मिलेगा एक कंपैरेटिवली कंफर्टेबल इवनिंग विद स्काइज पार्टली क्लियर। तो परफेक्ट टाइम है इवनिंग वॉक का, और हाइड्रेशन तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, एंड दिस वेदर फॉरकास्ट वॉज ब्रॉट टू यू बाय मलाबार गर्ल्स एंड डायमंड्स।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: बैठ जाऊं पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
3: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
2: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
4: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
5: इन प्लेनो।
4: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो।
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन। आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड।
8: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल।
7: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल।
8: ओके देन, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
7: And what's so special at Neon Cactus?
8: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
7: Not bad.
8: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
7: Okay, this I didn't expect from you.
8: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
7: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
9: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
15: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
16: हाँ।
15: घर रिलोकेट करनी है?
16: हाँ।
15: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
16: हाँ भाई हाँ।
15: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
17: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
18: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

एक वरी क्या, मैं तो मंडे टू थर्सडे 12:30 से 2:30 बजे तक आ जाती हूँ अपने लिसनर्स के लिए। आप सुन रहे हैं फनेशर रेडियो 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन June 21st, और इसमें हमें चाहिए आपकी थोड़ी सी मदद। आपको ना June 1st से June 15th तक एक गूगल फॉर्म भरना है और नॉमिनेट करना है अपना फेवरेट सॉन्ग अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज, क्योंकि हम मानते हैं कि हर मोमेंट के लिए एक सॉन्ग होता है, हर मूड के लिए एक मेलोडी होती है, चाहे वो रोमांस हो, हार्ट ब्रेक हो, वेडिंग एंथम हो या फिर एब्सोल्यूट पार्टी फेवरेट हो। हम जानना चाहते हैं कि आपके फेवरेट टॉप पिक्स क्या है। अगर आपके सिलेक्टेड सॉन्ग ने अपनी जगह बनाई ऑन 21st जून, जो कि हम अलग अलग कैटेगरीज के लिए, अलग अलग जॉनरेज के लिए उस दिन अलग अलग सॉन्ग प्ले करेंगे, अगर फाइनल प्लेलिस्ट में आपके सॉन्ग को जगह मिलती है तो आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस फ्रॉम फनेशिया। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए या फिर फनेशिया नेट पे जाइए और अपने सॉन्ग को फटाफट नॉमिनेट कीजिए। भाई अपने फेवरेट सॉन्ग के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप।

अभी लंच टाइम है तो मुझे तो लंच टाइम में अच्छे अच्छे खाने और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट की ही याद आ रही है। और सबसे पहले याद आता है मुझे पेस्ट्री ईटरी, जहाँ के मिलता है सिजलिंग कबाब और फ्लेवरफुल चाट फ्यूजन बाइट्स के साथ, और रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स भी मिलते हैं यहाँ पे। अगर आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है यहाँ का खाना तो जरूर एक बार तो मौका दे, हब 121 जाएं और देखिए कि वहाँ पे कैसे इंडियन स्ट्रीट फूड ना मॉडर्न फ्लेवर से मिलता है। आप वहाँ ब्रंच के लिए जा सकते हैं, लंच के लिए जा सकते हैं, डिनर के लिए जा सकते हैं, डेट नाइट, या फिर अपने दोस्तों के साथ चिल करने, फूडी मीटअप के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि पेस्ट्री लेके आते हैं परफेक्ट मिक्स फ्लेवर का, एनर्जी का, साथ ही साथ वाइब्रेंट वाइब्स का। और अभी अभी हमने जो लास्ट सेगमेंट में गिव अवे किया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि शिल्पा शेट्टी का बर्थडे है आज, उसी के साथ एक और अदाकारा का भी बर्थडे है। क्या आपको पता है वो कौन है? इसमें कोई गिव अवे नहीं है, बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कितना याद है। हिंट नेक्स्ट सॉन्ग में है, वो इस सॉन्ग से काफी फेमस हुई थी, वन ऑफ द मोस्ट संग सॉन्ग है ये। सो आई होप यू गेस इट राइट। अगर आपको पता है तो आप कॉल कीजिए 972-235-5555 पे।

हाँ जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है, आज बर्थडे है डिंपल कपाड़िया जी का। एंड थ्रू दिस सॉन्ग हमने भी उनका नाम लिया, हमने भी उन्हें याद किया। और फिलहाल हम बातें करने जा रहे हैं कनेक्टिंग अमेरिका के बारे में, जिसके हेल्प से आप अपने बिजनेस एक्सपेंस को एक पावरफुल इनकम स्ट्रीम में बदल सकते हैं, क्योंकि ये लेके आते हैं अपनी इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी विच इज डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन और टू इम्प्रूव योर बॉटम लाइन। सो इंतजार किस बात का है, कॉल कीजिए जेम्स को एट 321-888-7345 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज कनेक्टिंग अमेरिका फाइनेंशियल्स.com।

अगर आप ऐसे किसी लॉयर को ढूंढ रहे हैं या जानना चाहते हैं या किसी अटर्नी को जो कि आपको हेल्प करे इफ यू हैव फॉलन फॉर लाइक अ कार और अ ट्रक एक्सीडेंट, या फिर अगर आप फंस गए हैं किसी स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट में, तो यू शुड लुक आउट फॉर अटर्नी ओमर ख्वाजा, क्योंकि उनकी टीम काफी एक्सपीरियंस है और वो आपको इंश्योर करेगी कि आपके केस को जो है जो भी कॉम्पनसेशन आपका बनता है, जो भी आप डिजर्व करते हैं, वो बेसिकली आपको पूरा का पूरा मिल जाए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत बार काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है और आपको हेल्प लगेगी ऐसे अटर्नी की जो कि इंश्योर करे कि आपका केस अच्छे से हैंडल हो. और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको तब तक पे नहीं करना है जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते. अगर आपको चाहिए फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम, तो आप कॉल कर सकते हैं एट 4693005046, या फिर आप विजिट करें attorneyomar.com पे. और आज का ये जो सेगमेंट था आफ्टरनून अड्डा, दिस वॉज ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा विद द ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट. मेरे जाने का वक्त हो चुका है, मैं कल आपसे फिर मिलूंगी इसी वक्त 12:30 से 2:30 बजे तक. तब तक आपको फन एशिया के साथ बने रहना है एट 104.9 FM. और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहे तो मेरा आईडी है gimmysimmy GIMMI SIMMI. और इंजॉय कीजिए टुडे विच इज मंडे.

Well, that was Alisha Chennai's Made in India. अच्छा होता है ना कि आप अपने कुछ स्पेशल मोमेंट्स के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें ढूंढते हैं, या आपको कोई गिफ्ट कर दे तो बात ही क्या है, या आपको गिफ्ट करनी है और समझ नहीं आ रहा कि क्या गिफ्ट हो सकती है. तो आपको बताऊं दैट इफ़ यू आर लुकिंग टू ऐड अ लिटिल स्पार्कल टू योर स्पेशल मोमेंट्स, देन यू नीड टू हेड टू मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि प्रेस्टन रोड फ्रिस्को पे है. आपकी डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन. जहाँ चाहे वो रिंग्स हों या earrings on to dazzling necklaces ya fir contemporary diamond styles, right? Find the perfect piece for engagements, anniversaries, celebration or simply treating yourself, right? So experience unmatched craftsmanship brilliance at Malabar Gold and Diamonds in Frisco, and do not forget, download the Malabar Gold and Diamonds mobile app for the latest collections, updates and more details. So basically ghar baithe baithe bhi aap unka collection dekh sakte hain, select kar sakte hain. How cool is that?

अच्छा होता है ना कि चश्मे से बोर हो गए, कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा ली, अब कॉन्टैक्ट लेंसेज से भी बोर हो गए, होता है राइट? सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सेइंग गुड बाय टू ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज, देन हियर इज समथिंग दैट यू मे नॉट नो. जी हाँ, लेसिक इज जस्ट वन ऑफ सेवरल विजन करेक्शन ऑप्शन अवेलेबल टूडे. आपके पास ये ऑप्शन है. डॉक्टर शहजाद बाटलीवाला, अ फेलोशिप ट्रेंड आई सर्जन एंड फाउंडर ऑफ विजनरी आई इन प्लेनो, इनकी जो अप्रोच है इज वेरी सिंपल. बेसिकली एजुकेट फर्स्ट सो यू कैन मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर योर आईज विद कॉन्फिडेंस. तो वो आपको सब डिटेल्स बताते हैं एंड देन यू कैन चूज फॉर योर सेल्फ वॉट्स बेस्ट फॉर यू. सो टू लर्न अबाउट योर ऑप्शन एंड सी इफ यू आर अ कैंडिडेट, आप उन्हें कॉल करें. द नंबर इज 214-972-2020 और विजिट lasikpleno.com. एंड येस, याद रखिएगा, डू नॉट फॉरगेट टू मैंशन फन एशिया 2020 टू रिसीव अ फ्री कंसल्टेशन. विजनरी आई, हेल्पिंग यू सी योर फ्यूचर मोर क्लियरली.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
2: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
1: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
3: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
0: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 और विजिट lawsontravel.com।
4: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
5: अरे कहना क्या चाहते हो?
6: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू। कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
7: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
8: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
7: के टू ड्राइव मतलब
8: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
7: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
8: 100%
0: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0402। केटो ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
9: भूख लगी जोरों की
10: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
11: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
10: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
12: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
13: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.
14: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM।

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, covering in for Kiran. मैं दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555.

अल्लाह वाज टेकन फ्रॉम द मूवी ये दिल लगी। अच्छा होता है ना कि आपके पास अपनी एक प्लेलिस्ट होती है, उसमें आपके फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं। अब सोचिए कि वही प्लेलिस्ट कोई आकर आपके लिए लाइव गा दे, राइट? सो वेल डार्लिंग्स, आप तैयार हो जाएं एज योर प्लेलिस्ट इज अबाउट टू कम अलाइव। विशाल एंड शेखर, द ड्यूओ बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपर हिट्स, आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर टू डैलस। दिस इज गोइंग टू बी ऑन July 12th एट द कर्टिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड। टिकट्स आर नाउ ऑन सेल एट cashpatelproductions.com। दैट्स cashpatelproductions.com।

Well, that was taken from the movie Kabhi Khushi Kabhi Gham, and that was a dedication to Sophia's grandma. Thank you so much for tuning in. All right, आपको मैं सीमा मेहता लॉ ऑफिसर्स के बारे में बताना चाहूंगी, बिकॉज इफ यू आर ऑन एन H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा एंड प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प. Attorney Seema Mehta and her experienced team specializes exclusively in immigration law, including EB-5, investor visas, family and employment visas, and U.S. citizenship, right? So for more information on the EB-5 investor visa program, you need to email info@seemamehtalawfirm.com. That's info@seemamehtalawfirm.com, the law offices of सीमा मेहता. एंड द नेक्स्ट वन, वेल, काफी दिनों बाद एटलीस्ट मैं सुनूंगी इस गाने को. आई डू होप यू एंजॉय दिस वन.

Taken from the movie Mohra, that was तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त. एंड इसी से रवीना टंडन का इंट्रो होने लगा था कि भाई द मस्त मस्त गर्ल, जैसे कि धक धक के बाद माधुरी दीक्षित का होता था ना कि भाई दिस इज अ धक धक गर्ल.

Well, that was taken from the movie Beta. अच्छा, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगी, क्योंकि होता अक्सर ये है कि आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या आपके साथ 5 नहीं तो 10 मिनट लगाते हैं, राइट? वेल, एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली. सो फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज देयर. एंड दैट्स नॉट ऑल, एंड यू नो पैशन हेल्थ इज ग्रोइंग. सो यू नो दे आर हायरिंग एक्सपीरियंस्ड प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस एंड साइकेट्रिस्ट फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट पेशेंट केयर, देन सेंड योर रिज्यूमे टू पैशन हेल्थ फिजिशियंस एट gmail.com और यू कैन टेक्स्ट देम एट 217-454-4646 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और विजिट पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम और यू कैन कॉल 217-666-6259. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज आर पैशन.

0: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
3: Paid for by Mark Hill for Mayor.
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
7: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu? Dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai, to kabhi naukri ki chinta. Zindagi ke raaste dhundle ho gaye hoon. तो वक्त है सही दिशा का।
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
9: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401, प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
10: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
11: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
10: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
11: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
9: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
12: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
14: कौन सा?
13: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
14: अरे सारे तो सेम है।
13: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
14: ओ हाँ, ये तो अलग है।
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia,
3: 104.9 FM।

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूं मधुलिका एंड मैं दूंगी आपका साथ शाम 5 बजे तक. और एक गिव अवे आ गया है आपके लिए, तो ध्यान से सुने कि सवाल क्या है. एंड पहले तो बताऊं कि ये गिव अवे है क्या. सो गिव अवे है फ्रॉम नियॉन कैक्टस एंड यू विल विन अ $20 गिफ्ट कार्ड फॉर अ डाइन इन. जी हाँ, GFW फूड सीन फीलिंग अ लिटिल प्रेडिक्टेबल, सो वेल टाइम टू स्विच इट अप टू नियॉन कैक्टस वेयर मेक्सिकन फ्यूजन मीट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस. Fresh ingredients होंगे, ज़बीहा हलाल options and plenty of vegetarian choices as well, all packed with bold flavor and the vibe, ooh, young, colorful, modern, full of energy. Perfect for hangouts, date nights or your next chill plan. Top it off with curated cocktails, refreshing mocktails, happy hours Monday through Friday and special deals every single day. तो अब क्योंकि 3:30 to 4:30 मैंने प्लान किया है कि आपके लिए वो गाने प्ले करूंगी जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ज्वेलरी मेंशन्ड हो, राइट. सो यू हैव टू गिव मी अ कॉल, द स्टूडियो नंबर 9722355555 एंड टेल मी एनी 3 बॉलीवुड सॉन्ग्स विच हैव सम ज्वेलरी मेंशन्ड एंड यू विल विन नियॉन कैक्टस की तरफ से ये $20 गिफ्ट कार्ड.

0: ऑलराइट, तो हमने पूछा था आपसे सवाल, सवाल था ये कि आपको मुझे कॉल करके बताने हैं बॉलीवुड के कोई भी ऐसे तीन गाने जिनमें की ज्वेलरी मेंशन्ड हो. वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hey, hi, this
0: हाउ आर
1: is
0: यू?
1: Purva.
0: हे पूर्वा, हाउ आर यू?
1: I am doing great.
0: ऑलराइट
1: I am
0: पूर्वा,
1: doing
0: तो
1: great.
0: बताइए कौन से तीन गाने बताने वाले हैं आप?
1: First one is पायलिया
0: हो हो हो
1: हो.
0: हो ओके.
1: The
0: और
1: second one is झुमका गिरा
0: क्या
1: रे
0: बात है.
1: बरेली के बाजार में. And the
0: अच्छा,
1: third one is मुझे ना लखा दिला दे रे ओ सैया
0: क्या
1: दीवाने.
0: बात है, सैया दिलवा ही देंगे. इतने प्यार से आप मांगेंगी तो क्यों नहीं दिलवाएंगे. वेल सो पूर्वा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया नियॉन कैक्टस का ये $20 डाइन इन गिफ्ट कार्ड. आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू व्हाइल आई एम गोना प्ले वो झुमका वाला गाना, थोड़ा नया वाला वर्जन. हाँ, व्हाट झुमका. सो आई एम गोना प्ले दैट फॉर आवर लिसनर्स. आई विल
1: बिल्कुल,
0: टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू.
1: थैंक यू.

अब झुमका गिर ही गया है तो भाई ढूंढ ले उसे. एंड देवस्मिता, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन. एंड हियर इज अ सॉन्ग दैट यू रियली वांटेड टू लिसन टू, व्हिच इज मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं. सो वेल, हियर इट इज फ्रॉम द मूवी चांदनी.

0: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: मामू देखो क्या हो गया।
3: ओ क्या हो गया?
2: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
3: ओए जर्मन का कमाल है।
2: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
3: ओए नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी 972-690-6623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
4: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
9: कहाँ?
1: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
11: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, one vibe.
12: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
13: Chicken banana.
14: चिकन बनाना?
15: ब्रो बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
16: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
17: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

Well, that was a twist, Kamaria, taken from Bareilly Ki Barfi. And aapko main bata dun that 4:30 onwards, we'll have Mr. Sanjay Mathur. He'll be answering any litigation questions that you may have. So, yaad se aap call in kariyega. 4:30 to 5, wo humare saath honge. That's Mr. Sanjay Mathur from Mathur Law Offices. And आपको मैंने पूछा था एक सवाल. सवाल मुझे लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट था. क्या सवाल था? कि माधुरी दीक्षित के कोई भी दो गाने बताएं जिनमें कि कहीं कुछ ज्वेलरी मेंशन्ड हो. सो याद आए तो क्विकली कॉल करिएगा. एंड वेल द नेक्स्ट वन, लेट मी सी विच वन आई वांट टू प्ले. आई एम गोना प्ले फ्रॉम द मूवी रॉय.

0: All right, well, that was taken from the movie Roy. मैंने पूछा था आपसे सवाल कि आप मुझे कॉल करके बताएं कोई भी माधुरी दीक्षित के दो ऐसे गाने जिनमें कि कहीं ना कहीं कुछ ज्वेलरी मेंशन हो. एंड वी डू हैव अ लिस्नर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाय, माय नेम इज सबा
0: हे सबा, हाउ आर यू?
1: जी. मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं
0: बिल्कुल बढ़िया. बताइए कौन से गाने बता रही हैं आप?
1: जी? एक डोला है डोला
0: ओके, या बांध के मैं घुंघरू, पहन के मैं पायल,
1: जी
0: या
1: जी
0: ओके.
1: जी एंड दूसरा है अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं.
0: हा, बिना पायल के ही बजे घुंघरू. क्या बात है, क्या बात है सबा. ऑसम, वेरी वेल प्लेड. आपने फूलिस्तान गिव अवे जीत लिया है. आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर एंड यू नो आई एम गोना प्ले दैट अखियां मिलाऊं सॉन्ग फॉर आवर लिसनर्स. सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. हैव अ फैबुलस डे.
1: थैंक यू सो मच.
0: थैंक
1: थैंक यू. हैव अ
0: यू
1: गुड डे.
0: टू.

0: टेकन फ्रॉम द मूवी राजा, दैट वाज अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं। अच्छा, क्या होता है कि भले ही आपकी अखियां पूरी तरह रोड पर हैं, आप सारी सावधानी बरत रहे हैं, फिर भी हो जाता है दैट यू गेट इन्वॉल्व इन अ कार या ट्रक एक्सीडेंट या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट। तो आपको अटर्नी ओमर ख्वाजा रखने हैं याद, एज ही विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। यू नो, इंश्योरेंस कंपनी से भी वही डील कर लेंगे एंड यू डू नॉट पे अनटिल यू विन। सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 4693005046 और विजिट attorneyomar.com, दैट्स attorneyomar.com।
1: Dinner,

अच्छा होता भी है ना कि जैसा मूड होता है आपका मन भी वैसे ही नाचता है. एंड वर्ल्ड म्यूजिक डे आ रहा है. जी हाँ, 21 जून को होता है वर्ल्ड म्यूजिक डे. एंड फन एशिया वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट इट विद यू ऑल, राइट? बिकॉज एवरी मोमेंट हैज अ सॉन्ग. होता है ना कि जैसा मूड वैसा गाना याद आता है, या कोई गाने से कोई मेमोरी याद आती है. यू नो, वेदर इट्स रोमांस और हार्ट ब्रेक, अ वेडिंग एंथम और पार्टी फेवरेट, वी वॉन्ट टू नो योर टॉपिक. जून 15th तक आप हमारा गूगल फॉर्म भरें एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग्स अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज. एंड फनेशिया जो है विल सेलेक्ट द मोस्ट लव्ड सॉन्ग फ्रॉम ईच कैटेगरी, द सॉन्ग दैट हैज़ बिकम द हार्ट बीट ऑफ मिलियंस. सो जून 21st को, यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे वाले दिन, एवरी फनेशिया शो विल बी डेडिकेटेड टू अ डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरी फीचरिंग द विनिंग सिलेक्शंस. एंड यहाँ आता है आपका पार्ट. जी हाँ, जो आपने गाने वो गूगल फॉर्म में भरे हैं, राइट? द लिसनर्स हु सॉन्ग चॉइसेस मेक इट इनटू आवर फाइनल प्लेलिस्ट द मोस्ट विल विन एक्साइटिंग प्राइजेस. विजिट funasia.net और फॉलो आवर सोशल मीडिया पेजेस फॉर डिटेल्स. सेलिब्रेट द म्यूजिक, यू नो, द मैजिक ऑफ म्यूजिक विद funasia 104.9 FM.

A very warm welcome to the listeners of Fun Asia Radio 104.9 FM. It's 5:12 in the studio clock. 5:12 ho chuke hain ji. Monday ki shaam hai and 5 o'clock jab hota hai ji to aapko pata hai ki main aaunga aapke saath all the way till 7 o'clock. Monday to Thursday with the show jiska naam hai The Bindaas Show, only on Fun Asia Radio, bringing the community together. Monday aur June ki 8 tarikh, dekhte hi dekhte we're in a brand new month and that is the 6th month of the year. Yani ki aadha saal gayo. बहुत सारी बातें करनी है जी आपके साथ, इंक्लूडिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट टुडे, हु सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, एंड इफ यू गाइस आर सेलिब्रेटिंग अ स्पेशल डे, बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई भी अचीवमेंट आपकी या आपके बच्चों की, देन गिव मी अ कॉल. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. और जब ये टू वे स्ट्रीट होती है ना तो अच्छा रहता है, ट्रैफिक आता जाता रहे, इट्स ऑलवेज गुड, बिकॉज अटेंडेंट स्ट्रीट नहीं मजा आता, आगे रास्ता बंद हो जाता है. मेरे दादा कहा करते थे, आंख में अंजन दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर, कान में तिनका नाक में उंगली, मत कर मत कर मत कर. तो अच्छी अच्छी चीजें करते हुए चलो जी, एंड आई एम गोना प्ले सम लवली ट्रैक्स फॉर यू. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन व्हिच इज जस्ट लाइक यू ऑल, इट्स कॉल्ड वाओ. से वाओ. सो ब्यूटीफुल, सो प्रीटी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ यू ऑल.

0: वाह यार, मतलब सैफ अली खान याद आ गया। और अगर आपने अभी तक हमारा तेलुगु स्टेशन नहीं सुना है, जो तेलुगु लिसनर सुन रहे हैं, जाओ सुनो संगम, यू विल आल्सो से वाओ। तेलुगु में वाओ को क्या बोलते हैं बाला?
1: वाओ ही बोलते
0: हैं। वाओ तो तेलुगु में भी वाओ। सो सी, आई नो तेलुगु नाउ, यू कैन नॉट टेल मी कि आपको तेलुगु नहीं आती। मुझे आती है, बंगाराम पता है मुझे, मुझे गारू पता है, और मुझे क्या पता है, और मुझे वाओ, क्या बात है। ऑलराइट, विद दैट आई एम गोना टेक यू वन मोर ट्रैक। इस गाने के बाद लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। साथ साथ ये बता दूं, दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय आवर ड्राइव टाइम स्पॉन्सर, जिनका नाम है जी अटर्नी ओमर ख्वाजा। इफ यू एवर आर इन्वॉल्व इन अ कार रैक एक्सीडेंट, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मुसीबत कभी भी आप पे ना गिरे, बट इफ यू आर स्टक गिव देम अ कॉल और जस्ट सिंपली गो टू द वेबसाइट attorneyomar.com इज द वेबसाइट। एंड आई एम टेलिंग यू, अच्छा अटर्नी होना बहुत बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे नो हाउ टू फाइट फॉर यू। दे'ल गेट द मैक्स कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व। ऑल यू हैव टू डू इज कीप दिस नेम इन योर माइंड, एंड द नेम इज वेरी सिंपल, अटर्नी ओमर, एंड दैट्स द वे द वेबसाइट इज attorneyomar.com. लेट्स टेक यू टू वन मोर ट्रैक, इसके बाद छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, अ लॉट मोर फन कमिंग ऑन द अदर साइड।

0: वंडरफुल ट्रैक देयर, चुनरी चुनरी चुनरी को रंग भी इन्होंने चेंज नहीं किया, पता है सेम ही चुनरी हमारे आगे, बस नए पैकेज में डाल के दे दी है। बड़े वैसे वेरी नाइस क्रिएटिव वे ऑफ सेलिंग समथिंग ओल्ड इन अ न्यूअर पैकेज, है ना। कुछ नहीं चेंज किया, म्यूजिक नहीं चेंज किया, आवाज़ नहीं चेंज की, नथिंग, जस्ट अ न्यू पैकेज फॉर यू। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, समथिंग न्यू कमिंग अप।
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
3: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
4: घर की याद नहीं आई तुझे? जैसी
5: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
6: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
5: सच में बिल्कुल घर जैसा।
6: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
7: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
8: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
7: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
8: वेट, व्हाट?
9: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
10: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
9: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
11: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
12: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
11: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
13: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
14: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
13: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
14: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
13: ये क्या होता है?
14: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
14: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
15: क्या?
14: सैलरी बंद हो जाती है
15: और बिल्स बंद नहीं होते।
14: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल्थ टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
15: मतलब
14: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
9: द वेल्थ टैक्टिक, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com।
16: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी। सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
17: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
16: K2 ड्राइव मतलब
17: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
16: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
17: 100%
18: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 K2 Drive, Dallas's smartest fleet partner.
19: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

हम सब लोग अपनी लाइफ में ना शांति चाहते हैं, पीस पीस पीस। कई लोग पहाड़ों में जाते हैं, कई कुछ करते हैं, कोई ये करते हैं, पर अगर आपको शांति चाहिए ना जीवन में वाकई, तो आपको पहली चीज़ ये करनी है कि किसी भी मुद्दे पे, किसी भी बात पे भड़कने से पहले सामने वाले की ना पूरी बकवास अच्छे से सुन लो, फिर चाहे मन में बोल दो पागल है साला,

0: ऐसे करा करो। अच्छा, वाह वाह वाह, अरे वाह, ऐसा भी होता है? फिर मन में बोल दो हाँ वही। या फिर अगर आप शांति चाहते हो तो फिर आपको एक ही काम करना है कि शादी होने से पहले शांति नाम की लड़की ढूंढो, उसे शादी करो, घर में शांति ही शांति।
1: पीने की प्यास है, बनता ये बिंदास है।
0: अच्छा, कमाल की बात यह है कि जिस जिसकी बीवी का नाम शांति है, चाहे बंदे की लाइफ में उथल पुथल हो रखी है, उसको सिर्फ यही बोलना है शांति, चाहे गुस्से में है शांति, मतलब कमाल है।
1: बिंदास है ये, बंदा है ये।
0: फिर एक और आदमी जिसकी किस्मत में खुशी लिखी है, जिसकी बीवी का नाम खुशी है, ना चाहते हुए जितना मर्जी नाराज हो, जितना मर्जी सैड हो, उसको बोलना ही पड़ता है खुशी। भाई खुशी तो बहुत हुई इंडिया को, क्योंकि इनिंग्स डिफीट दे दी यार अफगानिस्तान को। खैर चलो, मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ इस गेम से, बट आई थिंक अफगानिस्तान टीम एज अगर वैसे देखा जाए, दे हैव कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे। कभी कभी दिन नहीं होता किसी टीम का, बट इंडिया डिड वेल, 564 इन देयर फर्स्ट इनिंग, 8 विकेट के साथ डिक्लेयर किया था, और इसमें टॉप स्कोरर रहे KL राहुल 100 ऑफ 165, साय सुदर्शन 81, शुभमन गिल 126, ऋषभ पंत 81, वॉशिंगटन सुंदर नॉट आउट एट 52। और फिर जब बल्लेबाजी करने अफगानिस्तान आया तो 152 पे पहली इनिंग्स को रैप अप कर दिया गया, एंड द सेकेंड इनिंग विच वॉज अ फॉलो ऑन 112 ऑल आउट, इंडिया वन दैट गेम विद द इनिंग्स एंड 300 रन्स। खैर अब जो इनका T20s आने वाले हैं वो देखने वाले हैं। एक्साइटिंग थिंग ये भी है कि यशस्वी नहीं अपने सूर्यवंशी इज गोन बी प्लेइंग द इंडिया ए टीम फॉर मेनी मैचेस टू कम। आई एम एक्साइटेड फॉर इट एंड आई थिंक यू ऑल माइट बी एज वेल। लेट्स टेक यू टू वन मोर ट्रैक, इसके बाद करते हैं और बातें खास। ऑफकोर्स द स्टूडियो लाइन्स आर ओपन फॉर यू इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड, कोई अच्छी बात करना चाहते हैं, अगर कुछ नाराजगी भी है, कहीं कोई बात है जो आप किसी और से नहीं कर पाते, शायद आप मुझसे कर पाएं। गिव मी अ कॉल 972-235-5555।

वंडरफुल ट्रैक देयर टेकन फ्रॉम द मूवी टू या में शान्या के एंड आदर्श भाई थे इस फिल्म में. गाना वाज अगेन अ रीमेक बट अ डिफरेंट वन एंड कीपिंग सम ओरिजिनलिटी टू इट. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मॉर्गेज, यू वांट टू गेट योर ओन होम, तो जरूर ड्रीम होम के साथ करें जी कॉन्टैक्ट. दे विल गेट यू सम ऑफ द बेस्ट डील्स दैट आर आउट देयर इन द मार्केट फॉर यू. 972-245-5626 is the number for Dream Home Mortgage. 972-245-5626. Right after this track, short sa chota sa nanna sa commercial break.

0: हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। टेक्सास में गर्मी बढ़ने लग पड़ी है, दोपहर की गर्मी में कम निकले, सिर्फ 5 से 7 निकले जब मार्विन का शो रेडियो पे आता। ठीक है, ओके टाटा, ब्रेक के बाद आया।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
5: Calculating route, rerouting.
4: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
5: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
4: क्यों?
5: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hurst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
4: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
7: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
4: हाँ।
7: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ।
7: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ।
7: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
8: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
9: डूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
10: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
9: कैसे?
10: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
10: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोल्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
11: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: सफर खूबसूरत है मंजिल से भी।
17: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
18: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
19: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
2: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
6: अरे कहना क्या चाहते हो?
3: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ primarycare.com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
20: साहिबान मेहरबान कदरदान फन एशिया सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड म्यूजिक डे.
21: वर्ल्ड म्यूजिक डे
20: गाने हर मोमेंट हर मूड हर मौके के लिए, चाहे वो रोमांस हो या फिर दर्द भरे, शादी हो या पार्टी, हमें बताइए आपकी पसंद.
22: फ्रॉम 1st June to 15th June फिल अप आवर गूगल फॉर्म एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम ईच जॉनर. मनीषा चुनेगा हर कैटेगरी के वो गाने जो बने लाखों दिलों की धड़कन. एंड ऑन 21st June वर्ल्ड म्यूजिक डे मनीषा के हर शो पर राज करेगा एक अलग म्यूजिक जॉनर. जिस लिसनर्स के सबसे ज्यादा गाने सिलेक्टेड होंगे वो जीतेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस. विजिट फनीशिया.net एंड आवर सोशल मीडिया पेजेस फॉर डिटेल्स.

0: यार एक शरीफ से बच्चे को मैडम ने स्कूल से घर भेज दिया। बताओ, मैडम ने घर भेजा, बच्चा घर पहुंचा, टीचर ने तो घर भेज दिया, मैडम ने जब घर भेजा तो मम्मी ने पूछा, जो घर पे मैडम होती है उन्होंने पूछा, क्या होगा बेटा आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? कहता, कुछ नहीं मम्मा, पता नहीं मैंने एक मच्छर मारा था, मैडम ने घर भेज दिया। वो कहती है, यार मच्छर मारने पर मैडम ने घर क्यों भेज दिया, ऐसा क्या मच्छर मार दिया तुमने? कहता, नहीं वो मम्मी, मच्छर जो है ना वो मम्मी की गाल पे बैठा था। कुछ गिव अवे हो जाए यार, व्हाई नॉट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू विन सम लवली लवली फूड, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज, लोकेटेड कहाँ पे हैं जी? लोकेटेड है जी फ्रिस्को में, एंड दे आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू विन सम लवली लवली बटर चिकन। तो नहीं, उनका ढाबा स्टाइल चिकन है, बटर चिकन तो वो खिलाता है आपको रेड हॉट चिली पेपर, पर ये वाले जो खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं जी आपको ढाबा स्टाइल ऑथेंटिक चिकन। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको इनकी दाल मखनी खानी है, जो घंटों तक पका के एकदम क्रीमी करके आपको सर्व करते हैं। दे आर लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, और ये जो कॉन्टेस्ट है ये आप सबके लिए ओपन है। दी ओनली कंडीशन इज कि आपने पहले इसको ना जीता हो, एटलीस्ट इन द लास्ट 30 डेज, एंड सेकेंड यू आर एबल टू गो एंड वहाँ डाइन इन करके इस खाने को आप इंजॉय करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर आप मुझे देंगे सही जवाब, यू गेट योर सेल्फ दिस लवली लवली गिव अवे फ्रॉम फ्लेवर लाउंज। वंस अगेन, दिस इज फॉर अ दाल मखनी फॉर द वेजिटेरियंस एंड ढाबा स्टाइल चिकन फॉर द नॉन वेजिटेरियंस। टुडे मार्क्स द बर्थडे ऑफ शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, और इनका बर्थ नेम था अश्विनी शेट्टी। शी वॉज बॉर्न ऑन टुडेज डेट 8th of June 1975। बस 11 साल पहले पैदा हो गई, और ये बॉम्बे में थी, मैं चंडीगढ़ साइड पे था। कहीं पहले पैदा मैं हुआ होता या ये लेट हुई होती तो बातें अलग होती हैं, धड़कन में शायद मैं होता। खैर, इसकी काफ़ी सारी फिल्में आई, बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारा अच्छा काम, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, जानवर, धड़कन, एंड देन रोल्स इन मूवीज़ लाइक इंडियन 2001, रिश्ते 2002, फिर मिलेंगे 2004, लाइफ इन अ मेट्रो, जो कि एक रोल वी ऑल रिमेंबर, एंड उसके लिए मिला था इनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। उसके बाद 10 आई थी 2005 में, एंड द स्पोर्ट्स ड्रामा अपने, दैट वॉज इन 2007। शट अप एंड बाउंस जो गाना आया था उसमें बहुत सारा अटेंशन मिला, दोस्ताना वॉज द मूवी। मेरा सवाल यह है कि इस एक्ट्रेस की पहली फिल्म कौन सी थी? इफ यू गिव मी द राइट आंसर, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा यानी कि अश्विनी शेट्टी की फर्स्ट मूवी कौन सी थी? 972-235-5555 कॉलर नंबर 3 जो देगा मुझे सही जवाब उसको मिलेगा जी ये गिव अवे फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज। व्हाट वॉज शिल्पा शेट्टी कुंद्राज फर्स्ट फिल्म? मेरे सवाल पूछते ही कॉलर्स की लाइन मेरे पास आ चुकी है जी। गुड इवनिंग टू यू, फन इज योर रेडियो, कौन बोल रहा
1: है? हाय, मैं सप्तर्षि मंडल बोल रहा हूँ।
0: सप्तर्षि मंडल, मुझे तो ऐसा सब क्या बोले, एस ए वी सप्तर्षि,
1: सप्तर्षि,
0: सप्तर्षि का क्या मतलब है सर, थोड़ा सा ज्ञान बांटते हो जाए।
1: ये संधि है, 7 ऋषियों को जब मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं सप्तर्षि।
0: क्या सप्तऋषि? अच्छा, सप्तऋषि, सप्तर्षि बोल लिया, सप्तऋषि, ऐसा ऐसे ही है ना सर, थोड़ा मैं ठीक आ गया?
1: हाँ हाँ हाँ,
0: सप्तऋषि साहब क्या बात है, मतलब आपसे तो बात करना ही एक प्रिविलेज है इटसेल्फ। आपके बॉस को ऐसा लगता है?
1: जब आप उनको लगता है कि नहीं, पता नहीं मेरे को।
0: उनको जब आप ऑफिस जाते हो ना, थोड़ा सा घमंड से जाया करो, थोड़ी चाल में भी अकड़ रखा करो, पीठ अकड़ा के छाती ऐसे निकाल के बेटा गुड मॉर्निंग, सप्तऋषि आए हैं। अच्छा, सप्तऋषि फिल्म का नाम पहली शिल्पा शेट्टी की, बाजीगर कहते हैं, सप्तऋषि देखते हैं आप सही हो कि नहीं। दूसरे नंबर पे कौन है मेरे पास? गुड इवनिंग फनेजिया, हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है?
2: हाय, भाविक है, बाजीगर।
0: आपका नाम क्या था?
2: भाविक,
0: भाविक,
2: राइट,
0: भाविक, भाविक भैया भी कह रहे हैं बाजीगर, भाविक भाई देखते हैं आप दुरुस्त हो के नहीं। कॉलर नंबर 3 पे कौन है मेरे साथ? रेडियो वॉल्यूम लो, योर वॉल्यूम अप, हु इज दिस?
3: Hi, this is Richa.
0: Hi, Richa. How are you?
3: Good, good. Thank you. How are you?
0: मैं अच्छा हूँ, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज फैंटास्टिक नहीं हूँ क्योंकि फैंटा खत्म हुआ हुआ था और कोका कोला पीने का दिल नहीं किया, तो मैंने कहा चलो आज पानी स्टिक ही चलेगा, सो आई एम वाटर स्टिक फॉर टुडे। अच्छा रिचा जी, फिल्म का नाम, डू यू नो?
3: बाजीगर।
0: आप फ्रिस्को जा सकती हैं?
3: हाँ जी बिल्कुल।
0: वो ले जाएंगे ना आपको साथ में बिठा के गाड़ी में?
3: अरे हम खुद चले जाएंगे जी।
0: उनको नहीं ले जाएंगे?
3: उनको भी ले जाएंगे, वो चलना चाहेंगे तो।
0: अच्छा, मतलब ये पूछोगे आप चलना है, मैं जा रही हूँ, ऐसे होगा?
3: बिल्कुल जी बिल्कुल, फिलहाल आई थी। हाँ जी,
0: ये है आज की हमारी इंडिपेंडेंट नारी, वेरी गुड। मैं तो चली हूँ, तुमने आना तो आओ, नहीं तो छोले खाओ. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपको मिला है जी ये गिव अवे फ्रॉम फ्लेवर लाउंज. यू विल होल्ड द लाइन फॉर मी, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द एयर. आपके जाने से पहले एक और सवाल पूछूंगा, शिल्पा शेट्टी की एक और फिल्म दैट यू लाइक,
3: दैट यू
0: लाइक, पसंद करती हैं.
3: ओके, आई लाइक धड़कन.
0: धड़कन. All right, cool. Hold the line for me. Congratulations. And Shilpa Shetty ki pehli film thi ji, absolutely. Kaun si? Bazigar. But agar inke career ki baat ki jaye, to inke kuch gaane jo ki bahut hit the, but Chura ke Dil Mera. Agar main ye na lagaun, to fir Shilpa Shetty ji ke birthday ko humne theek se manaya nahi. Here we go with that track that changed it all for both of them. Chura ke Dil Mera from the movie, jiska naam tha Main Khiladi Tu Anadi.

चुर्रा के दिल मेरा गोरिया चली, शिल्पा शेट्टी, व्हाट एन एक्ट्रेस, व्हाट अ पर्सनालिटी। आज भी योगा शोगा इतने ध्यान से करती हैं और फुल ऑन मतलब डेडिकेशन के साथ करती हैं। लुक एट हर मैन, दीज थिंग्स रियली वर्क। अगर आप सोचते हैं कि क्या योगा काम करेगी, शिल्पा शेट्टी इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल। बॉर्न ऑन टुडेज डेट 8th of June 1975, शी इज 51 ईयर्स ऑफ एज, पर 51 लग जाए। मैंगलोर कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू शिल्पा शेट्टी फ्रॉम द टीम हियर एट फनेजिया।

सोचते हैं कि क्या योगा काम करेगी. शिल्पा शेट्टी इज एन एक्सलेंट एग्जाम्पल. बॉर्न ऑन टुडेज डेट 8th of June 1975. शी इज 51 ईयर्स ऑफ एज. पर 51 लग जाए. मैंगलोर कर्नाटका से बिलोंग करती हैं. वेरी हैप्पी बर्थडे टू शिल्पा शेट्टी फ्रॉम द टीम हियर एट फनेजिया. एंड फ्रॉम शिल्पा जी, आपका अपना यू नो बंदा बंदा स्मार बंदा, हैप्पी बर्थडे जी.

0: उसमें जो सिंगर है उसे रिहाना बोलो, बिंदास बोलो, बिंदास बिंदास बोलो.
1: Absolutely, बिंदास बोलो जी, नाम मारविन दास बोलो. वेलकम बैक, इट्स 6:05 इन द स्टूडियो. क्लॉक 6:05 हो चुके हैं जी, और आज है मंडे की शाम, यानी कि मंगलवार है ना, सोमवार, शुक्रवार, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, नहीं क्या, शनि, सोमवार होता है यार, मंगलवार कल है यार. मारविन क्या हुआ यार तुम्हें यार, आज तो सोमवार है. चलो कोई बात नहीं, जो भी वार है, बस वार नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक ठाक है. अच्छा होगा अगर साथ में अचार हो जाए आम का और पराठा हो जाए आलू वाला, ओए होए होए, बाकी वार शाह अपन की लाना यार.

0: उससे तुम राइट बोलो।
1: और बिंदास आप मुझे भी बोल सकते हैं अगर नए गानों की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज देयर टू प्ले सम लवली लवली ट्रैक्स। कोई दिल में खास बात है, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैसी जिंदगी में खुश हैं, तो जरूर मुझे कॉल कीजिए, क्योंकि आई एम हैप्पी अबाउट लाइफ, गेटिंग अ न्यू डे टू लिव, टू मेक चेंजेस टू वट एवर इज अराउंड यू, चाहे वो बेटरमेंट के लिए है, चाहे आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए है। कीप डूइंग दैट एंड कीप एंजॉयिंग एंड चेरिशिंग एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एक इंसान भागा बड़ा परेशानी से गया जी, एक पहुंचता है ऑफिस में और बोलता है, सर प्लीज़ मेरी मदद करें, सर प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरी बीवी ना घर छोड़ के भाग गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, प्लीज़ बताइए। वो कहता है, यार ये तो पोस्ट ऑफिस है, आपको तो पुलिस स्टेशन जाना है। कहता, ओह खुशी के मारे पता ही नहीं लग रहा कहाँ जाऊँ यार। इतनी खुशी। This song and this part of the show is brought to you by Hail to Nail. Hail का season आ चुका है जनाब Texas में, and if your roof is compromised, you don't even know. और अगर roof में थोड़ी सी भी damage हुई और उसके बाद अगर आपको hail दोबारा hit कर गया, then there'll be more damage. Get yourself inspected, your roof inspected without any cost to you, and that is with Hail to Nail. Hail to Nail contracting है जी, जो आपके लिए professional roof replacement करते हैं, repairs हो, shingles हो या TPO metal roofing हो, and they also handle commercial and residential projects for रीमॉडलिंग। चाहे आपको पेंटिंग करवानी है, रिपेयर्स करवाने हैं, घर में कॉन्क्रीट का काम करवाना है, योर प्रॉपर्टी विल लुक एट इट्स बेस्ट विद हेल टू नेल। आप इनको गूगल कर सकते हैं, दे हैव 5-star गूगल रिव्यूज, एंड टू चेक देम आउट जस्ट गो ऑन टू गूगल, टाइप इन HAIL हेल द नंबर 2 नेल एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। फोन नंबर आप मेरे से ले लीजिए 682-561-9795। दे आर गिविंग यू फ्री इंस्पेक्शन एंड क्लेम असिस्टेंस विद योर इंश्योरेंस कंपनी। वेयर डू यू हैव टू गो? हेल टू नेल इन गूगल, और जस्ट कॉल 682-561-9795।

सोनाली बेंद्रे एट हर बेस्ट इन दिस मूवी, जिसका नाम था जी सरफरोश। क्या खूबसूरत मूवी बनाई थी, बहुत वंडरफुल एक्टिंग। नसीरुद्दीन शाह साहब की एक्टिंग ले लो, आमिर खान की ले लो, और वो जो बड़े से हैं एक्टर जो पुलिस का रोल करते हैं, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, बट व्हाट वंडरफुल एक्टिंग ही डिड एज वेल। इवन जो सपोर्टिंग रोल्स में थे, जबरदस्त एक्टिंग एंड आई थिंक अ वंडरफुल फिल्म सरफरोश। सोनाली बेंद्रे एंड आमिर खान एंड दिस ट्रैक वॉज स्पेशल इंडीड। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। फॉर नाउ इट इज अ टाइम टू टेक यू टू अनदर गिव अवे विच इज कमिंग फ्रॉम फन पिज्जा किचन। अब आपको ये तो पता है कि द बेस्ट पिज्जा इन टाउन इज अवेलेबल एट फन पिज्जा किचन, टू लोकेशंस, कॉलोनी एंड इन फ्रिस्को फॉर यू। और दोनों लोकेशंस पे जबरदस्त खाना है। इफ यू हैवंट हैड देयर अचारी पनीर पिज्जा या मेरा फेवरेट चिकन टिक्का पिज्जा और तंदूरी चिकन, पिछली बार तंदूरी चिकन खाया था, वो भी जबरदस्त है। I think the quality of cheese that they use is better to me compared to all the American joints. And अगर उनका आप garlic bread लेके fresh खा लोगे ना, ओए होए होए कमाल हो जाएगा। All right, करना क्या है आपको? करना simple है कि आपको मुझे एक सवाल का जवाब देना होता है। As always, today marks the birthday of this legendary actress जिन्होंने बहुत बहुत बहुत सारी फिल्में की। आज ही के दिन 8th of June she was born in the year 1957. आज 69 years की हो चुकी हैं and she was born and raised in Mumbai. बहुत ही वेल्दी पेरेंट्स थे एंड शी वॉन्टेड टू बिकम एन एक्ट्रेस एट अ वेरी यंग एज। और ये सिर्फ 14 साल की उम्र में डिस्कवर हो गई थी एंड शी डिड हर फर्स्ट फिल्म एट द एज ऑफ 14। नाउ दैट फिल्म वॉज अ मेजर कमर्शियल सक्सेस एंड बहुत सारा पब्लिक रिकग्निशन मिला। उसके बाद फिल्म रिलीज हुई थी 1973 में। देन एक्टिंग को थोड़ी देर के लिए पॉज किया, एक लीडिंग एक्टर के साथ शादी करी, दो डॉटर्स इनकी उनके साथ हुई और उसके बाद बहुत सारी फिल्में इनके नाम आई। मैं उन्हीं की फिल्म का एक गाना लगा रहा हूं एंड आप मुझे बताएंगी कि मैं किन की बताएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। स्टूडियो का नंबर 9722355555। वंस अगेन, इससे क्या मिलेगा आपको? इससे मिलेगा जी फन पिज्जा किचन का $10 का गिफ्ट सर्टिफिकेट विच इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड आई एम आस्किंग यू, हु वाज दिस लेडी दैट वाज बोर्न ऑन टुडेज डेट, or rather is born on today's date in the year 1957, got her first role at the age of 14 and became a star right away. And uske baad thoda sa pause because of wedding, two daughters, and then a career that is well established in Bollywood. Playing a song from her movie, you tell me the name of the actress. Caller number 3.

0: बॉबी खो जाए और बॉबी खो क्या गई, बॉबी ने तो पूरी दुनिया को हिला दिया जी विद द रिलीज ऑफ दिस मूवी एंड द एक्टिंग ऑफ द टू यंग स्टार्स इन दिस वन. मैं कॉलर नंबर 3 को ढूंढ रहा हूँ जो देगा सही जवाब. लेट्स सी हु डू वी हैव फर्स्ट हियर ऑन फनेशिया. गुड इवनिंग, हु इज दिस?
1: गुड इवनिंग, दिस इज फयाज.
0: फयाज?
1: फयाज.
0: खयाज, के एच ए वाई ए जी.
1: एफ ए वाई वाई ए जी.
0: फयाज, एफ ए वाई वाई ए जी. फयाज भाई, सब ठीक?
1: जी, यस यस सर.
0: फयाज, डू यू नो द एक्ट्रेस?
1: यस, डिंपल कबाड़िया.
0: डिंपल कबाड़िया कहते हैं फयाज साहब. गुड इवनिंग. नंबर 2, हु इज दिस? हेलो, कैन यू हियर मी?
2: दिस मैसेज हैज.
0: नहीं भाई, मैसेज मैं कहां लेने के लिए बैठा हूँ. गुड इवनिंग फनेज.
3: हाँ जी,
0: रेडियो वॉल्यूम कम. जी, कौन बोल रहे हैं जी?
3: राम कुमार जी.
0: राम कुमार जी, क्या हाल है जी?
3: बस ठीक है जी.
0: बड़े सीरियस हो राम कुमार जी, सब ठीक है?
3: हाँ सब ठीक ठाक.
0: चलो राम कुमार जी, फिल्म का ना, नहीं एक्ट्रेस का ना?
3: डिंपल कुमारिया अपनी.
0: डिंपल कुमारिया अपनी. अच्छा, मैंने ये दसो, साढ़े देसियों से ये बड़ी गल है कि डिंपल कुमारिया अपनी, शिल्पा शेट्टी अपनी, ते नाल नाल इंदिरा गांधी अपनी. जिदा क्लासमेट रखी हो अपनी. चलो ठीक है राम कुमार जी, बहुत बहुत मेहरबानी. कॉलर नंबर 2 ते सीगे जी राम कुमार जी. गुड इवनिंग फनीश, हु इज दिस? कौन बोल रहा है?
4: दिस इज नीता.
0: नीता, हाय नीता, हाउ आर यू?
4: नीता, एम आई
0: जी. मीता, हेलो मीता जी, कैसी हैं? ऊपर वाला मेहरबान. खुली हमारी दुकान, आप कुछ है बचे 40 मिनट इस दुकान में, उसके बाद पापड़ी वगैरह बिक जाएगी मेरी. अच्छा ये बताएं कि एक्ट्रेस का नाम मालूम है? अपनी डिंपल कवाड़िया. चलो ठीक है जी. यस, इट इज डिंपल कुमारिया. कांग्रेचुलेशंस, होल्ड द लाइन फॉर मी. हाँ जी, ये हमारे आदत है भाई. वो यार अपने मोदी नू देख लो, अपना मोदी नहीं, तेरे चाचे का मुंडा मोदी. वो अपना वो नहीं यार, टॉम क्रूज अपना. हाँ हाँ, वही जिन्हों बचपन से कहते थे टॉमी टॉमी टॉमी. केयर नंद लेस, यस इट इज डिंपल कुमारिया सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे. मूवी वॉज बॉबी जो रिलीज हुई थी, एंड शी वॉज जस्ट 14 ईयर्स ऑफ एज, डिस्कवर्ड बाय द फिल्म मेकर राज कपूर. उसके बाद शादी की जी राजेश खन्ना साहब से, 2 डॉटर्स ट्विंकल एंड रिंकी खन्ना, एंड ऑफकोर्स बहुत सारी और फिल्में इनके नाम, जैसे कि काश, दृष्टि, लेकिन, रुदाली, परहार, अंगार, गर्दिश, क्रांतिवीर. एंड टुडे वी ऑनर दिस एक्ट्रेस इन हर बर्थडे, ऑन हर बर्थडे, डिंपल कुमारिया. वेरी हैप्पी बर्थडे टू you from the team here at Funasia and from Banda Bindas, and congratulations to Meeta on winning the Funasia giveaway. I'll be right back after these messages.
5: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
6: Paid for by Mark Hill for Mayor.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, phir pooja ka saman, gifts bhi khareedne hai aur in sab kuch ke baad main cooking nahi karne wali. Kahin acha sa dinner karke aayenge.
11: Aur ye sab kuch agar ek hi jagah ho jaye to?
12: Kahan? Foodistan in Aubrey. Fresh grocery, halal meat, pooja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
13: Foodistan in Aubrey. Everything desi, one place, one vibe.
11: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
2: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
11: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
2: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
13: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
14: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
13: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
15: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। I felt completely stuck. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
11: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनकी जिम्मेदारी।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में सब संभाल लेंगे?
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

एक लेडी को ना एक लावारिस बंदर मिल गया। वो लेडी उसको पुलिस स्टेशन ले गई। इंस्पेक्टर ने लेडी से कहा कि इसे ना चिड़ियाघर ले जाओ। मैडम दूसरे दिन फिर से बस स्टैंड पे खड़ी थी और वो बंदर साथ था। पुलिस वाले ने देख लिया। पुलिस वाले ने कहा, यहाँ क्या कर रही हो इसके साथ? तुम्हें बोला था इसको चिड़ियाघर ले जाओ। वो कहती, हाँ कल चिड़ियाघर ले गई थी, आज इसको घंटाघर दिखाने ले जा रही हूँ। भाई अपने अपने सोचने का लेवल होता है। उन्होंने कहा चिड़ियाघर ले जाओ, वो लेके गई, घुमाया, दोनों को मजा आया। अगले दिन वो घंटाघर देखने गए। अब अगले दिन वो कह रहे हैं कि शायद पिक्चर देखने का प्लान था। अच्छा मैं उन लेडीज को बता दूं कि जो लेडीज मेरी बातें सुनकर हंसती नहीं है ना, वही आगे जाके ना फ्यूचर में वो चुड़ैल सासें, जिनको लोग बोलते हैं गंदी सास, वो बनती हैं फिर जाके।

0: ठीक है लेडीज, तो समझ गई हो ना, अब हंसते रहा करो मेरी बातों पे यार, नहीं तो क्यों आपको आई मीन बैड लेडी बैड सास बनना है ना। You're listening to an evening drive time show. Welcome back after the break. It's 6:25 at the studio clock. 6:25 ho chuke hain ji, aur aaj June ki 8 tarikh Monday ki sham Dimple Kapadia ji ka birthday. Very happy birthday to you Dimple ji once again from the team here at Funasia and from Banda Bandas and giving us some wonderful movies, and of course Twinkle Khanna as another actress that has given us some wonderful acting and some wonderful movies. Along with Dimple Kapadia ji, today also marks the birthday of Kanye West, yani ki the American rapper songwriter. On the today's day, June 18th, the year was 1977. He was born in Atlanta, Georgia, of course known as a hip-hop icon, producer and a businessman, and somebody who's done a lot of work in the hip-hop scene in the United States. Today we wish him a very happy 49th birthday from the team here at Funasia and from me. Janab, ek gaane ki taraf aapko le ja raha hoon, uske saath saath ek sawal hai mujhe aapse. ये सवाल लेडीज मुझे बताएंगी इसका जवाब. पहले तो ये बता दूं कि दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय नन अदर देन माय टाइम एक्विटी. अगर आप चाहते हैं कि आपका रिटायरमेंट प्लान बिल्कुल सेट हो, प्लान्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर इनकम, माय टाइम एक्विटी कैन डेफिनेटली हेल्प. फ्रॉम रियल एस्टेट टू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स लेड बाय प्रिंसिपल सुधीर पाय, द वेबसाइट इज mytimeequity.com. ऑलराइट लेडीज, सवाल ये है कि कौन सी उम्र में जाके, एंड ये लेडीज से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता है, हमें कम पता है, एंड फिर हम गलती ना करें ना एम ए आंटी बोल के. तो मुझे ये पूछना है कि कौन सी उम्र में जाके लेडी को आंटी बोला जा सकता है कंफर्टेबली. व्हाट इज दैट एज यू थिंक इज गुड फॉर पीपल टू स्टार्ट कॉलिंग द फीमेल लेडी एंड आंटी. अब देखो, कई जगह ऐसा होता है कि जो छोटे बिल्कुल बच्चे होते हैं, 2-3 साल के 4 साल के, वो अपनी मासी को आंटी करके बोलते हैं तो वो क्यूट लगता है. But outside of that, when can we normalize calling a lady auntie, according to you ladies? Please advise, throw some light. If you need candle or battery, stop and buy some battery, then throw light. What age lady call auntie right? चकदा फटे तो दस दे मेनू बता दो जी फटाफट. यार रेडियो का वॉल्यूम कम करो, लड़ाई कौन कर रहा है पीछे, ऐसे क्यों करते गाड़ी
1: सब मेरे, हमारे बच्चे बच्चे.
0: अच्छा बच्चे हैं तो बच्चे मन के सच्चे बच्चों को माफ किया, बच्चों को माफ किया. कौन बोल रहा है बड़ा?
1: मेरा नाम संजय कुमार है.
0: संजय कुमार, ये तो मैंने सवाल लड़कियों से पूछा था, ये आप क्यों दे रहे हैं जवाब? बीवी की तरफ से दे रहे हैं?
1: करेक्ट. वो बच्चे ओके. ये मेरा जवाब है कि जब बच्चा 1 या 2 साल जब बोलने लगता है, और जो लड़की 40 साल होती है, तब आंटी बुला सकते हैं.
0: कौन आंटी बुला सकता है, बच्चा क्या? आप
1: बच्चा आंटी बुला सकते हैं, हम नहीं.
0: बच्चे तो कभी भी बुला सकते हैं. संजय भाई, मैं तो पूछ रहे हूँ मेरे जैसा कब या आपके जैसा कब आंटी बुला सकता है, ये पूछ रहे हैं हम. चलो हम लेडीज से पूछते हैं. गुड इवनिंग फनेशिया, हु इज दिस?
2: हाय.
0: हाय.
2: तो ये लेडी को आंटी कहने की एज लेडी की नहीं है, वो कहने वाले की एज पे डिपेंड होता है. अच्छा. तो एज लॉन्ग एज कहने वाले की एज 5 से कम है तो चलेगा.
0: अच्छा अच्छा, मतलब 5 से कम वाला कभी भी आंटी कह सकता है, और उससे ऊपर हाँ, वाले को थोड़ा मतलब ही
2: कभी भी नहीं.
0: कभी भी नहीं.
2: कभी भी नहीं.
0: आप चश्मा तो नहीं लगाती हो?
2: नहीं, लेकिन अगर अगर आप कह के तो देखो, फिर देखो क्या रिजल्ट आता है.
0: नहीं, मैंने इसलिए पूछा चश्मा तो नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल आपका ना एनल मतलब आंसर बिल्कुल ऐसा था जैसे मतलब बिल्कुल सही डायरेक्शन, इसको बोलते हैं एक दिशा और सही रास्ता जिंदगी बदल दे. क्या नाम था आपका?
2: हिरल.
0: हिरन किरण?
2: हिरल.
0: हिरल हिरल हिरल. हाँ. जी बहुत बहुत शुक्रिया. और कौन है मेरे साथ, ये कहाँ चले गए? तो क्वेश्चन इज दिस कि भाई व्हाट इज द एज कि हम एक लेडी को आंटी कह सके. मतलब पिक्चरों में इतनी बारी बोला उन्होंने और बड़ा अच्छा लगता है आंटी मत कहो ना. गुड इवनिंग फनेशिया रेडियो, रेडियो वॉल्यूम कम, अपना बढ़ाओ. कौन बोल रहा है?
3: मैं अर्चना बोल रही हूँ.
0: कौन बोल रही हूँ? सना जी. सना जी सलाम.
3: हेलो अर्चना. अर्चना बोल
0: अर्चना अर्चना कैसी हैं आप?
3: हाँ मैं ठीक हूँ, बोलिए.
0: मैं थोड़ी बोलूंगा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने बोलना है कि कौन सी वो उम्र है। आपने तो अर्चना वाली बात कर दी, वो जो पूरन सिंह बैठती है। हाँ जी, अच्छा बताइए फिर कौन सी उम्र
4: है। मेरे हिसाब से तो आंटी का बोलना चाहिए, वैसे तो वुमेन्स होती है खूबसूरत और ये, लेकिन जब उनके साथ अंकल दिखने वाला आदमी चलता हो जो मोटा हो, पेट बाहर हो और टकला हो, तो ऑब्वियस उनको अंकल बोलेंगे तो साथ वाली को आंटी बोल ही लेते हैं लोग।
0: मोटा हो, टकला हो और पेट निकला हो, ये तीनों क्वालिफिकेशन साथ में चाहिए, उसके बाद हम आंटी बोलेंगे साथ वाली को। ठीक हो गया मैम। अच्छा आप जब सब्जी मंडी जाती हैं तो वो साथ जाते हैं?
4: वो ही जाते हैं, मैं नहीं जाती।
0: अच्छा तभी आप, अरे आप बड़ी स्मार्ट हो, आप नहीं जाती हो क्योंकि आप जाओगी तो फिर वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि अंकल को देख के तो ऐसे ही लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू वेरी मच। देखो भाई ऐसा नहीं है, मैं तो यही बोलूंगा एट द एंड तक आंटी मत कहो ना। जब है पंडे

0: वंडरफुल ट्रैक देयर और सवाल मेरा कंटिन्यूड था और मेरे साथ तृप्ति जी हैं, इन्होंने बड़ा जबरदस्त सा जवाब दिया। तृप्ति जी नमस्कार, कैसी हैं आप?
1: नमस्कार, मजे में हूँ।
0: पहले तो पूरे गुजरात को मेरी तरफ से नमस्कार, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं गुजराती में मैम? हेलो को,
1: पर मैं गुजराती हूँ ही नहीं।
0: अच्छा अच्छा मुझे लगा आप गुजराती हैं, चलो मेरे को गलती हो गई।
1: नहीं, मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, मैं मराठी हूँ।
0: अरे आप मराठी हैं,
1: जय महाराष्ट्र।
0: चलो चलो एंड में आई तो लगा जैसे आंटी के लगता है, मराठी गुजराती आंटी। अच्छा अब बताएं आप मुझे कि व्हाट इज द एज जो आपने एग्जांपल दिया, वो जरा स्पष्ट बताइए ना हमारे लिसनर्स को।
1: जी ठीक है, तो अगर बात करने वाला मतलब संबोधने वाला आदमी 50 साल का है और उस आदमी जिससे वो बात कर रहा है उसकी उम्र उस आदमी के आंटी जितनी है, तो बेशक उस औरत को आंटी बुलाएं।
0: अच्छा तो जैसे मैं अगर 40 साल का हूँ तो अगर मैं किसी लेडी से बात कर रहा हूँ और अगर वो लेडी की उम्र मेरी आंटी जितनी है तो मैं उनको आंटी बुला सकता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: चलो
1: वो सही मायना रहेगा,
0: बिल्कुल सही है। देखो ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल कितने हमारे पास खूबसूरत लोग हैं। तृप्ति जी ने कितना अच्छा बताया आपको। सो नेक्स्ट टाइम ये सवाल पूछने से पहले अपने गिरेबान को झांक कर देखना, अपने आप को एक बार आईने में जरूर देखना मेरे दोस्त। सच्ची कह रहा हूँ सलमान की तरह, आई लव यू ऑल ब्रो।
2: ना कोई साथी है फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: भैया टैक्सेस करवाने हो तो एजी फिन टैक्स का नाम लिख लो इससे पहले कि IRS आपकी जिंदगी में आके ठक ठक ठक ठक करे। एजी फिन टैक्स इज द प्लेस टू गो। वेबसाइट वही है जी, agfintax.com। और जैसे अनिल कपूर साहब ने कहा था, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, करता हूँ मैं वो तुम भी करो जी। और ये बात कर रहे हैं 1-2-4, 4-2-1 टैक्सेस का होता है जी यही काम। और अगर आपके पास अच्छा CPA हो, दे विल मेक श्योर दैट योर टैक्स लाइबिलिटीज आर मिनिमाइज्ड एंड यू मेक द मैक्स आउट ऑफ योर बिजनेस। फॉर दैट यू जस्ट हैव टू गो टू द वेबसाइट agfintax.com, गेट द डिटेल्स, गेट इन टॉकिंग विद somebody एट their टीम एंड गेट योर taxes sorted। बात कर रहे थे जी हम आंटी की, एक लेडी का फोन आया, कहते जी जब तक खुदा ने, ऊपर वाले ने, बनाने वाले ने औरत को बुरा नहीं किया, तुम आंटी कैसे कह सकते हो। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। अब वो जो बच्चा घर आता है और बेल बजाता है और बेल बजा के अपने दोस्त को बुलाना चाहता है, बट मतलब मम्मी बाहर आती है, तो वो क्या बोलेगा? यही बोलेगा ना, आंटी वो रमेश घर पर है या राजू घर पर है। खैर गोरे तो हमेशा से आंटी बोलते आए हैं, जब भी उनसे पूछो क्या लोगे, कहते हैं ठी। समझ रहे हो ना, ब्रेक के बाद आया।
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
3: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan dhuaan? क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
4: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
6: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू, एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanaa Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: Mamu, देखो क्या हो गया?
8: ओ क्या हो गया?
7: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
8: ओए जर्मन का कमाल है।
7: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
8: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
9: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।

दिल चाहे पालतू हो या आवारा हो, इसका ख्याल रखना आपका आपकी जिम्मेवारी है। एंड पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर कैन मेक इट इजियर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर दिल। फिर चाहे उसको लेफ्ट लगाएं, राइट लगाएं, ये चॉइस टोटली आपकी है। एट पैशन हेल्थ केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम। इट्स नॉट अबाउट रशिंग, इट्स नॉट अबाउट 5 मिनट्स, बट दे डू टेक द टाइम टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज एट पैशन हेल्थ you're not a patient, you are treated like family, your family and the rest of the community. Sabka khayal rakhte hain ji Passion Health wale, because they have multiple locations and Passion Health is growing. They are now hiring experienced primary care doctors. So if you or in your family there is a doctor looking for a new opportunity, then the Passion Health Care might be it. Chahe aap endocrinologist ho, pediatrician ho, ya ho psychiatrist, they are needing you. Full-time and part-time opportunities are available. If you're passionate about patient care, get your resume going to passionhealthphysicians@gmail.com. That's passionhealthphysicians@gmail.com or text 214-454-4639 for more information. passionhealthphysicians.com is the website for you. Aur ab leke chalta hu aapko khane peene ki taraf, kyunki we have a giveaway coming up from Sal's Hot Chicken. 3 jumbo tenders jeet sakte hain aap. Main ek sawal puchunga, aap jawab denge to aapko wo milega. Par aapko ye bhi bata dun ki on the 14th of June, which is this coming Saturday, 4 p.m. onwards, Sal's Hot Chicken Richardson aapke liye contest leke aaya hai. If you finish one jumbo tender, and mind you, this is their spiciest level of tender, you get a free sandwich for 7 days. आपको इसके साथ एक कप दूध जरूर मिलेगा, बट आप उसमें अपने टेंडर्स को डुबो या डिप नहीं कर सकते. यू कैन सिप द मिल्क अलोंग, बट यू हैव टू फिनिश दोज टेंडर्स इन 10 मिनट्स. अच्छा, चैलेंज तो 3 टेंडर का है, आपको 3 खत्म करने हैं. पर चलो मैं कहता हूँ, अगर आपने एक भी खत्म कर लिया तो आपको मिलेगा 1 सैंडविच फ्री फॉर 7 डेज. इफ़ यू फिनिश 2 ऑफ देयर स्पाइसी टेंडर्स, यू गेट 1 free sandwich फॉर 15 डेज. एंड इफ यू फिनिश ऑल 3 inferno टेंडर्स, यू गेट द ग्रैंड प्राइज, विच इज अ फ्री sandwich for complete 30 days. Remember the date, mark your calendars, next Saturday coming up, June 14th, 4 p.m., Sal's Chicken in Richardson. Here we go with the question that I'm going to ask you, and if you give me the right answer, you get 3 tenders from Sal's Hot Chicken. I'm playing you a song, and you have to tell me the name of the movie. It's very simple, and I think it cannot get any simpler than that. Here we go with the next track. I am looking for the name of the movie.

0: लुकिंग फॉर द नेम ऑफ दिस सॉन्ग्स मूवी, और याद रखिए कि रिचर्डसन में और वहां जाके इसको एंजॉय करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. गुड इवनिंग फनेजा, हु इज दिस?
1: हाय, गुड इवनिंग, दिस इज दर्शन.
0: दर्शन भैया, रिचर्डसन में दर्शन दे सकते हैं सैल्स हॉट किचन पे?
1: जी बिल्कुल सर.
0: बहुत बढ़िया सर, अब बताइए फिल्म का नाम.
1: रंग दे बसंती.
0: अरे थोड़ा सा कहीं इधर उधर हो गए मेरे भाई. दर्शन तो आप देंगे पर आपको चिकन वो नहीं खिला पाएंगे मेरे दोस्त. कोई बात नहीं दर्शन, बने बने रहे मेरे साथ और इंटरेस्टिंग चीजों के लिए. गुड इवनिंग फनेजिया, हुज दिस? रेडियो वाले लो अपना ज्यादा, कौन बोल रहा है भाई या बहन?
2: हेलो, मैं रचित बोल रहा हूँ.
0: रचित भाई कैसे हैं आप?
2: हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ. अब ये बताओ कि आपको फिल्म का नाम मालूम है और रिचर्डसन जा सकते हो?
2: रिचर्डसन जा सकते हैं और फिल्म का नाम है ब्लफ मास्टर.
0: ब्लफ मास्टर, जस्ट लाइक योर प्री मैरिज टाइम?
2: नहीं अभी भी.
0: अभी भी?
2: हाँ
0: नहीं, ब्लफ मास्टर मतलब झूठ नहीं बोलने वाले मास्टर को ब्लफ मास्टर कहते हैं. मैंने कहा शायद आप शादी से पहले थोड़े मेरी तरह थे. ब्लफ
2: नहीं बोला ना अभी भी.
0: अभी भी? ओए यार ये बात, क्या नाम बोले अपना?
2: रचित.
0: रचित बस ऐसी रहो, हिट रहो, मेरे साथ दोस्ती जरा ज्यादा बढ़ा लेना क्योंकि आई वुड लाइक टू लर्न दिस ट्रिक ऑफ ब्लफ मास्टरिंग इवन आफ्टर मैरिज. होल्ड द लाइन फॉर मी. कांग्रेचुलेशंस, यू वन योरसेल्फ सैल्स हॉट किचन्स हॉट चिकन्स, 3 जंबो टेंडर्स. हाउ टू गेट देम? आई विल गिव यू द डिटेल्स, होल्ड ऑन फॉर मी. यस इट इज ब्लफ मास्टर, जस्ट लाइक दिस जेंटलमैन. शादी के बाद भी

एक कबूतर गाड़ी से टकरा जाता है और कबूतर बेहोश हो जाता है। गाड़ी वाला उसको उठाता है और घर ले जाता है। घर ले जाके उसको पिंजरे में रखता है कि भाई होश आएगा तो चलो कहीं उड़ उड़ा के चोट टूट ना लग जाए। जब कबूतर को होश आता है, कबूतर देखता है कि वो पिंजरे में बंद है, वो कहता है ओ तेरी जेल हो गई।

उठाता है और घर ले जाता है, घर ले जाके उसको पिंजरे में रखता है कि भाई होश आएगा तो चलो कहीं उड़ उड़ा के चोट टूट ना लग जाए। जब कबूतर को होश आता है, कबूतर को होश आता है, कबूतर देखता है कि वो पिंजरे में बंद है, वो कहता है ओ तेरी जेल हो गई, लगता है वो आदमी मर गया। Anyway, with that, it is adios, bye-bye, good night after me. It's Ippy the Hippie entertaining you all the way till 10 o'clock. She brings some different vibe. अगर आपने उसको पहले नहीं सुना है तो मैं encourage करता हूँ कि बने रहे रेडियो के साथ और सुने Ippy the Hippie को. और अगर सुना है तो आपको पता है कि कुछ fresh vibe, कुछ fresh music लेके आएंगी. So stay tuned with her and of course, give her that confidence. थोड़ा phone show कीजिए, उसका हौसला बढ़ाइए because she's new to our radio station and you the people are the ones that can make anybody comfortable. तो चले, आप उनको सुने. मैं कल आऊंगा जी आपके साथ अगर उस उबरने दी जिंदगी एक और दिन का मौका, देन आई विल बी हियर 5 टू 7 एंटरटेनिंग यू ऑन योर फेवरेट स्टेशन फनेजिया विद योर फेवरेट इवनिंग ड्राइव टाइम शो द बिंदास शो विद योर वेरी ओन बद्दा बिंदास मारविंदास. एंड हमेशा एक बात कहना चाहूँगा कि आप पूरी दुनिया का ख्याल रखना चाहते हो, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना चाहते हो, आप अपने आप का ख्याल कब रखोगे यार, उस पर भी फोकस करो. मेक श्योर हाँ कर लेंगे हो जाएगा ऐसा नहीं होता. जब पटाखा बजता है ना तो पटाखा बज जाता है, इसलिए पटाखा ना बजने दें. मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. द वुमन और द मैन इन द मिरर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ. मैं बता रहा हूँ आपको, आपके आसपास आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बिजनेसेस, आपका पैशन, आपका फूड, आपका फूडी हैबिट्स, आपका टेस्ट, आपका फ्लेवर, एवरीथिंग रिजल्ट्स ऑन योर वेल बीइंग. सो मेक श्योर टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ द पर्सन इन द mirror that you see every night and every evening, every morning. And every time you see that person, tell them you are the best. With that, it is adios from the best to all of you, the best.